दोस्तों आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश का कार्यक्रम ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो। मैं हूं आपका होस्ट आरजे एंडी, और इस गाने की रिक्वेस्ट जो है, जब मैंने बोला था आपको कि ये ऐसा गाना है जो हमारे आज तक की हिस्ट्री में अगर हम लोग जाके देखेंगे तो एवरी आपकी फरमाइश प्रोग्राम दैट we do around Valentine's Day, this song is requested by so many people. So before I go on to the next song, this particular song came to us from Kiran Boyapati, Sanjana and Kiran. So thank you guys for sending that request to us. Aapki Farmaish के गाने इस प्रोग्राम में चलेंगे, एंड एज आई सेड एट द बिगिनिंग ऑफ द शो, दिस इज अ वेरी स्पेशल प्रोग्राम क्योंकि वैलेंटाइंस डे है आज। में जनरली होता ऐसे है कि इट्स अराउंड दैट पर्टिकुलर वैलेंटाइंस डे के आसपास में हमारा शो होता है, बट आई थिंक टुडे यू आर listening this particular show on the day of Valentine's Day, which is supposed to be the most romantic day of all other 365 days. क्योंकि जैसे हम लोग बात करते हैं कि it is one of those days where people are, you know, expressing their love. तो आप सुन रहे हैं इश्क वाला वैलेंटाइन का आपकी फरमाइश का प्रोग्राम, जहाँ हर धड़कन में है प्यार, हर शब्द में है एहसास, और हर गाने में छुपी है किसी की अधूरी या पूरी मोहब्बत। तो आज का ये जो शो है आपकी फरमाइश का, जहाँ पे आपने रिक्वेस्ट किए हुए गाने हम बजा रहे हैं, जो किसी से प्यार करते हैं, जो किसी का इंतज़ार करते हैं, या जो सिर्फ प्यार में यकीन रखते हैं। तो दोस्तों, With that being said, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपकी फरमाइश प्रोग्राम में। मैं हूँ आपका होस्ट आरजे एंडी, और आप सुन रहे हैं आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो। सो फॉर ऑल दोज फोक्स हु आर लिसनिंग टू मी ऑन द ऐप और ऑन आवर रेडियो, यू कैन सेंड योर रिक्वेस्ट इफ यू वॉन्ट टू डेडिकेट समथिंग रियल क्विक ऑन दिस डे ऑफ वैलेंटाइंस डे। तो आप क्या कर सकते हैं, फटाफट आपकी रिक्वेस्ट हमें भेज दीजिए। एज सुन एज वी गेट दैट रिक्वेस्ट, हम आपके लिए वो रिक्वेस्ट चलाएंगे। विथ दैट बीइंग सेड, अभी जा रहे हैं हमारे अगले गाने की तरफ। तो ये जो अगला गाना है, ये भी रिक्वेस्ट हमको आई है। आई थिंक दिस इज कमिंग टू अस फ्रॉम कोलंबस ओहायो, नाम आपको गाने के बाद में बताऊंगा। बट बिफोर आई गो ऑन टू दिस नेक्स्ट सॉन्ग, आज है 14 फरवरी, हाँ, अभी एक महीने बाद, दैट इज ऑन 14th of March, शुद्ध देसी रेडियो हैज़ ऑर्गेनाइज द Holi and Kite Festival. This is our tradition that we have been doing this Holi event for I think last 6-7 years now, and it's going to be at the Centennial Park. Thoda sa location, matlab within the park is going to be a little different, but that is happening on 14th of March. So do not miss that. Tickets are available right now on shuddesiradio.com. वहाँ पे जाके टिकट खरीदिए, and then I'll see you guys there on at the Holi and Kite Festival, which is going to be a phenomenal thing as it has been for past so many years. With that being said, let's move on to our next song right here. Here you go, and then for those.

तो दोस्तों, वेलकम बैक टू आपकी फरमाइश का प्रोग्राम। मैं हूँ आपका होस्ट RJ Andy। और अभी जो हमने गाना चलाया था फ्रॉम मूवी तमाशा, अगर तुम साथ हो, संग ब्यूटिफुली बाय अरिजीत सिंह एंड अलका याग्निक। और गाने की रिक्वेस्ट हमारे पास में आई है अंकिता और अरविंद की तरफ से। थैंक यू वेरी मच फॉर सेंडिंग दैट रिक्वेस्ट टू अस। दिस इज कमिंग फ्रॉम कोलम्बस ओहायो गाइस, सो थैंक यू वेरी मच अरविंद एंड अंकिता फॉर सेंडिंग दैट रिक्वेस्ट टू अस। एज आई एम टेलिंग यू, वी आर यू नो, व्हेन वी प्ले दिस आपकी फरमाइश प्रोग्राम या हमारा जो दूसरा होता है दिल से देसी, वी हैव सो मेनी लिसनर्स दैट लिसन टू अस लाइव, एंड देन देर आर सो मेनी प्रोग्राम्स दैट वी रन थ्रू आउट द डे। तो आज के इस प्रोग्राम में जो बढ़िया से बढ़िया गाने आए हैं, आई एम सो हैप्पी टू प्ले इट फॉर यू। अगला वाला जो गाना है दैट इज किसी की एक्चुअली जीवन कहानी का एक कुछ हिस्सा है, और उसके साथ में दे हैव सेंट अस देयर लिटिल यू नो इनसाइट टू देयर लव स्टोरी। तो उनकी मुलाकात कुछ कॉफी शॉप में हुई थी, कुछ पहली नज़र। तो जैसे बोलते हैं ना, दो अजनबी गलती से टकराना फिर मुस्कुराहट, और इसमें ऐसे हुआ कि उनका नंबर तो हरे लिया ही नहीं, तो फिर दूसरी दिन उसी टाइम उसी शॉप में जाना और फिर उनसे मुलाकात होना, और उस टाइम में उन्होंने उनका नंबर लिया, मतलब एक दूसरे ने नंबर लिया, एंड फ्रॉम दैट पॉइंट दे हैव बीन इन टच, एंड दैट बेसिकली देयर फ्रेंडशिप देयर लव एक्चुअली वॉज यू नो दे गॉट मैरिड ऑन 14th of February इज वेल। तो विद दैट बींग सेड, ये जो गाना है, गाने की रिक्वेस्ट किसने भेजी है और ये किसकी स्टोरी थी, ये मैं आपको बताऊंगा गाने के बाद में। बट बिफोर दैट लेट मी प्ले दिस सॉन्ग। इट्स अ वेरी वेरी बढ़िया सा सॉन्ग है, एंड You take a listen, here you go. And for all those folks who are joining me here on our Shuddh Desi Radio's Facebook Live, if you are watching this right now and if you want to send us your आपकी फरमाइश अगर हमारे रेडियो में चलनी है तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे ऐप में जाइए, एंड देयर इज अ फीचर प्ले रिक्वेस्ट अ सॉन्ग वाला। तो यू कैन एक्चुअली रिक्वेस्ट अ सॉन्ग फ्रॉम देयर एंड ट्राई टू मेंशन यू नो वेयर यू आर सेंडिंग दैट रिक्वेस्ट फ्रॉम, बिकॉज वो बढ़िया रहता है कि यू नो जैसे इंडिया में हम लोग सुनते थे वो प्रोग्राम, आज तक झुमरी तलैया से हमको कोई रिक्वेस्ट नहीं आई है, बट देर हैव बीन यू नो सो मेनी प्लेसेस दैट वी गेट रिक्वेस्ट। जो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये इस गाने के पहले में जो चलाया था दैट केम फ्रॉम कोलंबस ओहायो। सो विद दैट बीइंग सेड, आई एम गोइंग टू गो अहेड एंड प्ले दिस पर्टिकुलर सॉन्ग फॉर यू। बढ़िया सी प्रेम कहानी की है, और टेक अ लिसन, हियर यू गो।

राइट दोस्तों, तो ये अभी जो गाना आपने सुना, पहला नशा पहला खुमार, ये रिक्वेस्ट हमको भेजी है प्रतीक और प्रतीक और सोनाली ने। दिस इज देयर लव स्टोरी का ये सॉन्ग था जो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी हमको। तो यू गाइज, यू नो, आई थिंक आपने हमारे साथ में आपकी स्टोरी शेयर की, जैसे जहाँ वो यू नो कॉफी शॉप में शुरू हुई एंड इट कल्मिनेटेड इन टू बोथ ऑफ यू गेटिंग मैरिड। सो कंग्रेचुलेशंस टू यू गेटिंग मैरिड ऑन वैलेंटाइंस डे, दैट इज डेफिनेटली फिनोमिनल। वंस अगेन हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू यू एंड ऑल अवर लिसनर्स। दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट RJ एंडी और आज के इस प्रोग्राम में जैसे हम गाने चला रहे हैं जो आपने रिक्वेस्ट किए हुए गाने हैं, तो send your request. I actually have few requests that came in just now. तो अगर इस वैलेंटाइंस डे पर आप किसी के लिए कोई गाना डेडिकेट करना चाहेंगे, कोई पुराना प्यार, कोई अधूरी मोहब्बत, या फिर वो जो आज भी दिल के सबसे करीब है, दिस इज द मोमेंट गाइज फॉर यू टू सेंड इट। ऐसे वैसे देखा जाए तो यू नो हर वैलेंटाइन पर फूल या चॉकलेट या गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी एक ऑनेस्ट सा मैं हूँ ना, दैट इज़ आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट वैलेंटाइंस गिफ्ट दैट यू कैन गिव टू योर लव पार्टनर और योर लव और योर वैलेंटाइन। विद दैट बींग सेड, लेट्स प्ले दिस फिनोमिनल रिक्वेस्ट दैट केम इन। गाना जो है वो है अराउंड 60s का, बट आज भी उतना ही मधुर है और उतने ही उसमें जो जज्बात है, यू कैन लिसन टू द सॉन्ग एंड टेल अस How you like this song? गाने के बाद में बताएंगे गाने की रिक्वेस्ट कहाँ से आई है। Here you go.

दोस्तों, ये संगम मूवी का गाना था 1964 वाला, लेकिन यहाँ पे तो जिक्र हो रहा है प्रेम पत्र का। और आज के ज़माने में आई एम नॉट श्योर कोई किसी को पत्र यानी कि लेटर भी लिखता होगा। आई जस्ट हर्ड समटाइम यू नो आई थिंक लास्ट वीक और उसके पहले में कि इंडिया में वो जो लाल कलर के पोस्ट के डिब्बे होते थे जहाँ पे यू कैन एक्चुअली मेल योर लेटर या पोस्ट कर सकते थे, आई थिंक देयर हैज़ बीन अ डिसीशन आई थिंक टेकन बाय इंडियन पोस्टल सर्विस दैट दे आर गोना रिमूव ऑल दीज यू नो रेड डब्बे जो थे। ये उस जमाने की बात है जहाँ पे पीपल यूज टू राइट लेटर्स टू ईच अदर, चाहे वो प्यार के खत हो या कुछ यू नो अपनी फैमिली के साथ में कुछ यू नो बातें हो। दैट यूज टू बी इन दोज डेज ऑन लेटर्स। आई थिंक इफ यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस टू ऑल दिस जेन जी हियर, आई थिंक दे विल प्रोबेबली नॉट इवन यू नो फैदम द आइडिया ऑफ समवन एक्चुअली राइटिंग फॉर यू नो मे बी 2 or 3 pages और वट एवर एंड देन मेलिंग इट। एंड इट वुड टेक मे बी डिपेंडिंग ऑन वेयर दे आर मेलिंग इट, वेयर टू दे आर मेलिंग इट टू, इट वुड टेक मे बी 1 week to 3 or 4 weeks टू गेट दैट लेटर। एंड जिसको भी लेटर मिलेगा, वो खत मिलेगा, दे विल राइट अ रिस्पॉन्स एंड दैट दैट विल टेक अनदर 4 weeks। वो उस जमाने की बात है, जेन जी को समझाना काफ़ी काफ़ी मुश्किल है। तो ये जो रिक्वेस्ट आई थी वो आई थी समीर देशपांडे की तरफ से। समीर, थैंक यू वेरी मच फॉर सेंडिंग दैट रिक्वेस्ट टू अस। उस जमाने में लेके गए आप हमको जहाँ पे जो प्यार का इजहार या प्यार की जो बातें होती थी वो खतों के जरिए होती थी। उस जमाने में फोन भी इतना कॉमन नहीं था। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सॉन्ग। बट जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि अगेन टुडे इज 14th of February, वैलेंटाइंस डे। अ मंथ फ्रॉम नाउ यू आर गोना हैव अनदर चांस टू enjoy the Holi and Kite Festival organized by Shuddh Desi Radio. This has been a tradition of Shuddh Desi Radio to bring all the Desi community and all the local community together. और आपको अगर ये मौका चाहिए कि यू नो आज है 14th of February, अ मंथ फ्रॉम नाउ विच इज़ ऑन 14th of May, यू शुड कम टू होली एंड काइट फेस्टिवल एंड एन्जॉय इट विथ योर लव्ड वंस एंड वी विल बी ग्लैड टू यू नो होस्ट यू आउट देयर। टिकट्स आर अवेलेबल ऑन shuddhdesiradio.com। विद दैट बीइंग सेड, मैं अभी जो अगला वाला गाना चलाने जा रहा हूँ, आई वॉज थिंकिंग कि आज का जो प्रोग्राम है उसमें बहुत सारे गाने आएंगे जो अरिजीत सिंह के रहेंगे, बिकॉज़ यू नो वो मखमली आवाज़ और वो जो यू नो दैट वॉइस दैट एक्चुअली मेक्स कनेक्शन एंड दैट इज़ बेसिकली लव एंथम। जो भी कोई गाना सुनता अरिजीत सिंह का, दैट इज़ व्हाट दे बेसिकली से। बट विद दैट बीइंग सेड, लेट्स मूव ऑन टू दिस पर्टिकुलर सॉन्ग। हियर यू गो, यू आर गोना बी लिसनिंग टू द सॉन्ग फ्रॉम ब्रह्मास्त्र। Here you go.

दोस्तों वेलकम बैक टू दिस फिनोमिनल एपिसोड ऑफ आपकी फरमाइश ब्रॉट टू यू ऑन वैलेंटाइंस डे. वैलेंटाइंस डे स्पेशल आपकी फरमाइश का प्रोग्राम. एंड दिस बेसिकली ये जो अभी जो सॉन्ग था दैट एक्चुअली केम टू अस फ्रॉम भरत. And Bharat actually, sorry about that, guys. This actually came to us from Bharat. Thank you, Bharat, for sending that request to us. Now let's talk about ye Valentine's Day ka jo special, you know, itna abhi that has with social media, it's definitely grown to event or a day wherein a lot of retailers actually are banking on, you know, a lot of sell on this day, whether it is roses, whether it is chocolates, whether it is any kind of gifts, teddies, you know, you name it. It's pretty much all the storefronts actually have it. Aur ye jo वैलेंटाइंस डे का जो स्टॉकिंग चालू होता है स्टोर में दैट्स अबाउट 4-6 वीक्स बिफोर इवन द वैलेंटाइंस डे एक्चुअली ऑकर. सो अराउंड यू नो एज सून एज न्यू ईयर इज डन आई थिंक यू नो ऑल द रिटेलर्स आर प्लानिंग टू स्टॉक देयर स्टोर्स विद द मर्चेंडाइज फॉर वैलेंटाइंस डे. गो टू एनी ऑफ दीज यू नो स्टोर फ्रंट्स दैट्स वॉट यू आर गोइंग टू फाइंड. तो एक मेरी याद है जब हम लोग पुणे में थे आई रिमेम्बर अगेन यू नो ग्रीटिंग कार्ड्स यूज टू बी अ बिग थिंग ऑन एट दैट टाइम. अगेन पीपल वुड यू नो गिव ग्रीटिंग कार्ड टू देयर लव्ड वंस ऑन वैलेंटाइंस डे एटसेट्रा. बट दैट टाइम टॉकिंग अबाउट 90s की बात कर रहा हूँ सो देयर यूज टू बी अ बिग यू नो अ बिग पोलिटिकल पार्टी देयर एक्चुअली द लीडर ऑफ इट वॉज कम्प्लीटली अपोज इन ब्रिंगिंग दिस वेस्टर्न कल्चर इन टू इंडिया. और उस टाइम में बहुत मतलब कॉलेजेस में एंड ऑल दैट ऑल द किड्स मतलब लड़के लड़कियाँ वो वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करने के लिए देखते थे. बट विद दिस you know development of the political parties and all the student unions getting involved into it bahut sare colleges mein this was ye aise chup chup ke manaya jata tha. At least मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र की जहाँ पे ये ऐसे कुछ होता था. दे वर कम्प्लीटली अपोज टू सेलिब्रेटिंग दीज वेस्टर्न कल्चर ब्रिंगिंग दैट वेस्टर्न कल्चर एट्सेट्रा. बट आई हैव हर्ड नाउ दैट थिंग्स हैव चेंज और इतनी बदल गई है कि वहाँ पे आई थिंक वट एवर दैट पोलिटिकल पार्टी दैट वॉज देयर that's probably gone that's probably wiped out in all the elections and all that. And all the Gen Z and all the generation there, they are big into celebrating Valentine's Day. They have kind of, you know, adopted that whole western culture back in India. So jaise bolte hai na kabhi kaha hi nahi tujhse par har dua mein tera naam likha hai. वो पूछते हैं हम क्यों खामोश रहते हैं शायद उन्हें अंदाज़ा नहीं कि हमने दिल उन्हीं के नाम कर रखा है. दोस्तों विद दैट लेट्स टेक अ लिसन टू दिस फैबुलस सॉन्ग हियर यू गो. अगर आप सुन रहे हैं ये प्रोग्राम और आपको किसी को डेडिकेट करना है आज के इस स्पेशल अवसर पर यू कैन ऑलवेज ईमेल अस info@shuddeshireadio.com. हियर यू गो.

209 की गाने की रिक्वेस्ट और दिस ऑन द स्पेशल वैलेंटाइंस डे आपकी फरमाइश का प्रोग्राम. कुछ चंद ही मिनट बचे हैं, अराउंड 10 मिनट्स. सो इफ़ यू स्टिल वांट टू गेट योर रिक्वेस्ट इन, यू स्टिल हैव गुड यू नो चांस दैट योर सॉन्ग विल प्ले ऑन दिस एपिसोड. तो आज हम लोग बात कर रहे हैं कि यू नो हाउ एवरीवन इज इन द मूड फॉर सेलिब्रेटिंग द वैलेंटाइंस डे. स्टोर फ्रंट की बात की हमने, ऑफ कोर्स जेन ज़ी इज देयर, एंड देन यू नो इन द वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया एवरीवन वांट्स टू स्टे ऑन टॉप ऑफ ऑल दीज थिंग्स. तो विद दैट बीइंग सेड, किसी ने एक गाना भेजा है. दिस इज़ फ्रॉम द 80s और बढ़िया सा गाना है. सो लेट्स टेक अ लिसन टू दैट सॉन्ग राइट हियर. ओ हियर यू गो विद दैट सॉन्ग दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. जो 80s वाला जो सॉन्ग है, बहुत ही प्यारे से बोल है उस गाने के. और गाने की रिक्वेस्ट हमको किसने भेजी है वो तो आपको पता है, हम लोग गाने के बाद में बताते हैं. सो हियर यू गो.

ऑल राइट दोस्तों, ये गाना जो था दैट एक्चुअली वाज फ्रॉम मूवी याराना। गाने की रिक्वेस्ट आई है संजीव की तरफ से, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों ये प्रोग्राम इट्स ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट, और एक गाना शायद बच सकता है अभी, तो आई एम गोइंग टू प्ले दैट सॉन्ग फॉर यू। बट बिफोर दैट, विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे। थैंक यू फॉर हमारे साथ में जुड़ने के लिए यहाँ पे, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। ऐसे ही आपका प्यार हमारे तरफ जो है, यू कीप ऑन शावरिंग योर ब्लेसिंग्स एंड योर लव टू अस, दैट्स अ रियल यू नो वैलेंटाइंस डे गिफ्ट फॉर अस। विद दैट बींग सेड, फॉर ऑल दोज फोक्स who don't have a Valentine, or who are actually in the process of, you know, making one of their, you know, friends or someone as their Valentines, उनके लिए एक बढ़िया सा गाना। With all that being said, I'm signing off from the studios of Shuddh Desi Radio, and keep listening to one of the best radios that you can actually find in the continental US and all over the world actually. So here you go, Padhya Sagana, take a listen. So with that being said, I just wanted to once again wish you all a very very happy Valentine's Day. रात चुप है, चांद भी खामोश है, बस एक तू है जो ख्यालों में हर वक्त मौजूद है। वेल, एज गैरिसन कीलर सेज, डू गुड वर्क, स्टे हैप्पी एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। हैप्पी वैलेंटाइंस डे, डू गुड वर्क।

ऑन शुद्ध देसी रेडियो बात कर रहे हैं हम आज दर्द की। दर्द के बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं कि दर्द पेन हमें कैसे बदल देता है। और अगर आपको मेरी बातें पसंद आ रही हैं, अगर आपको ये शो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए और फॉलो करिए मुझे और शुद्ध देसी रेडियो को फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, ताकि आप ये अच्छी वाली बातें मिस ना कर सकें। ये जो बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, जो बीत गया वो गुजर क्यों नहीं जाता, निदा फाजली साहब की दो ये खूबसूरत लाइनें। और मैं ये बात करी थी कि दर्द की एक बड़ी खासियत होती है, दर्द की खासियत होती है कि वो हमें बदल देता है। और

This is your host Shalini after a long, long time in Shuddh Desi Radio Heart to Heart program में. इस साल का ये मेरा पहला Heart to Heart शो है. बहुत दिनों के लिए मैं गायब थी, वापस आ गई हूँ अभी. तो एक सवाल है आप सभी लोगों के लिए कि ऐसा हुआ है क्या आपके साथ में कभी कि आप ये इतना हैप्पी न्यू ईयर सुन के परेशान हो गए हो. और न्यू ईयर की बात होती है, न्यू मी की बात होती है, और इस नए साल में जहन में ये सवाल तो आता होगा ना कि चेंज क्या हुआ है. बस एक डेट, एक तारीख ही तो बदल गई है, बाकी तो कुछ पता नहीं. हम आप सब वैसे के वैसे ही रहते हैं. बहुत से रेजोल्यूशंस हम ज़रूर बनाते हैं लेकिन वो उतनी जल्दी टूट भी जाते हैं. तो नया क्या होता है नया साल में तारीख बदलने के अलावा. अगर आप लोगों के मन में भी ये ख्याल है नए साल के बारे में तो मेरे पास आपके लिए कुछ है कि कभी कभी दूर तक बिखरे हुए कुछ नहीं में भी खुद से मुलाकात हो जाती है. हाय, मैं हूँ शालिनी और आप सुन रहे हैं मुझे हार्ट टू हार्ट में ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो. और इस साल, इस नए साल आपके और भी करीब जाने का वक्त आ गया है. एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जहाँ पे दिल की गहराइयों से होंगी सच्ची बातें, आपके दिल की बातें मेरी जुबानी हार्ट टू हार्ट में. तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत बेतहाशा बेइंतहा बधाई हो. जैसे कि मैंने बोला कि बहुत बड़े इंतज़ार, बड़े गैप के बाद मैं ये शो लेके आई हूँ. कुछ ये नया साल कुछ अच्छा नहीं, शुरुआत अच्छी नहीं हुई मेरे लिए. फिज़िकली मैं बोलूँ तो काफ़ी उतार चढ़ाव आए आ रहे हैं अभी भी मेरी सेहत को लेके. तो इसकी वजह से मैं गायब थी ऑलमोस्ट 2 महीने के लिए, नहीं कर पा रही थी शो. तो बात कर रहे हैं नए साल में बदलाव की. तो इतने सालों से हम सुनते आ रहे हैं ना कि न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, न्यू यू न्यू मी. वन काइंड ऑफ अ बोरिंग सा लगने लगता है सुनने के बाद में ये. तो जहन में मेरे हमेशा ये सवाल आता है कि ये भाई बदलाव हुआ क्या है, क्या बदला है नए साल में हमारे. अपनी बात करूँ तो मेरे अंदर में क्या बदला आया है. तो जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि कैलेंडर की क्या तारीख ही बदल जाती है, या हम में आप में भी कुछ बदलाव होता है. कुछ चीज़ें हैं ना जो हमारे अंदर वो कभी नहीं बदलती हैं, वो हमेशा ऐसी ही रहती हैं. चाहे वो किन चीज़ों से हमें खुशी मिलती है, हमारी ख्वाहिशें क्या हैं, हमारी पसंदें क्या हैं, हमारे ड्रीम्स क्या हैं. अगर एक बदलाव होता है थोड़ा बहुत, तो अगर कुछ नया आ गया, एक सपना हमारा पूरा हो गया, ख्वाहिश पूरी हो गई, तो दूसरी ख्वाहिश उसकी जगह ले लेती है. लेकिन वो एक जो ख्वाहिश है, वो जो सपना है, वो चीज़ें कांस्टेंट रहती है हमारे जहन में. तो उसमें कुछ बदलाव नहीं आया. हमारी चॉइसेस होती हैं, हम किस तरीके से जीना चाहते हैं, कि लोगों के साथ हम बात करना चाहते हैं, ये सब तो कभी नहीं बदलता ना. और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं होता, जो कि हम चाहते हैं कि बदल जाएं लेकिन वो नहीं बदलती हैं. जैसे कि क्या ही बढ़िया होना कि नए साल में किसी के कुछ कहने से हमारा जो मूड ना ख़राब हो, हमारे ऊपर उसकी किसी बात का कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े. हम ये चाहेंगे कि ये बदलाव आ जाए ना, ये चेंज न्यू ईयर में. पर क्या वो पॉसिबल है कि किसी की बातें हमें इफ़ेक्ट ना करें? क्या ये पॉसिबल है? क्या हम ये बदल सकते हैं? या फिर किसी ने कुछ कहा, या कुछ हमारी थिंकिंग, ओवर थिंकिंग के चलते हम अपने आप को और दूसरों को जज करने लगते हैं. तो क्या ये हमारे बस में है कि हम दूसरे की बातों को अपने ऊपर इतना इम्पैक्ट ना लाने दें और अपने आप को जज ना करें, या अगले इंसान को हम जज ना करें? या बहुत कुछ ऐसा है कि हमारे कंट्रोल में भी नहीं है, और जो हम बदलना चाहते हैं बदल नहीं सकते हैं. अब हालात कैसे होते हैं, वक्त कैसे बदलता है, क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें उनका योगदान रहता है इन सारी परिस्थितियों में, जो मायाजाल होता है. लेकिन जो कुछ भी हो, वी कैन नॉट कंट्रोल दैट. जो ये हमारे बाहर की चीज़ें होती हैं उन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते. तो फिर हम क्या बदल सकते हैं? हम बदल सकते हैं जो हमारे अंदर चल रहा है, और हम
हम क्या सोच रहे हैं और हम उन पे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, वो बदलाव ला सकते हैं। और शायद हम उन बदलावों की बात करते नहीं हैं। नए साल में हम रेजोल्यूशंस तो लेते हैं, वो कुछ डिफरेंट ही टाइप के होते हैं, या शायद जो एक ट्रेंड चलता आ रहा है रेजोल्यूशंस का, या जो सब है कि हमें अपनी सेहत बनानी है, हमें ये गोल करना है, वो गोल करना है, उस सब के माया जाल में रहते हैं। लेकिन वी नेवर ट्राई टू गो एक्चुअली इनसाइड एंड चेंज, कि जो हम अपने अंदर चेंज कुछ चीज़ों का कर सकते हैं, जिनकी वजह से शायद बाहर की चीज़ों में भी बदलाव आ जाए। तो अगर आपको थोड़ा सा ये गुत्थी लग रहा है, आपको लग रहा है कि मैं क्या बात कर रही हूँ, तो कोशिश करें कि इस प्रोग्राम में कुछ पॉइंट्स को लेके मैं आऊँगी और उस पर हम बात करेंगे कि क्या है ऐसा जो हम बदल सकते हैं और क्या है जो नहीं बदला जा सकता। तो उसके लिए हमें परेशान और हताश और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी सब की बातें करते हैं इस प्रोग्राम में। पहले सुना देती हूँ आपको ये गाना, जो पहले बैकग्राउंड में चल रहा है, लेकिन अभी सुनते हैं इसको फुल वॉल्यूम में।

0: आप सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर 1 ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।
1: वेलकम बैक दोस्तों, हार्ट टू हार्ट में विद योर होस्ट शालिनी। बात कर रहे हैं हम आज नई शुरुआत के, न्यू ईयर की बात कर रहे हैं कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम इतने सारे रेजोल्यूशंस तो लेते हैं, लेकिन क्या है जो एक्चुअल में बदलाव हैं, जो हम ये न्यू यू की बात करते हैं, न्यू मी की बात करते हैं, एक्चुअली में वो है क्या, और क्या जेन्युइनली, क्या सही मायने में वो चीज़ें की जा सकती हैं जिनसे कि हम वो अचीव कर सकते हैं और कुछ एक्चुअल में बदलाव हमें दिखाई पड़ेगा, सही मायने में पॉजिटिव रियल बदलाव और चेंज। तो अब मुझे लगता है कि इस कड़ी में जो सबसे पहले नंबर आता है ना, बाउंड्रीज का नंबर आता है। बाउंड्रीज बनाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि क्रिकेट आप खेलते होंगे, देखते होंगे, जो क्रिकेट की बाउंड्रीज होती हैं, तो जैसे कि क्रिकेट की बाउंड्री होती है, वैसे ही लाइफ की भी बाउंड्री होती है। दोनों में थोड़ी सी सिमिलैरिटी है, थोड़ा सा डिफरेंसिएशन है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि जो क्रिकेटर्स हैं, प्लेयर्स हैं, उनके जो है उन्होंने बॉल मारी और खेलते खेलते कभी जो है बॉल बाउंड्री के उस पार चली जाती है, और अगर कभी अगर उड़ के चली जाए यानी कि सिक्सर लग जाए तो उसकी अपनी अलग ही बात होती है, वो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन जो ये बाउंड्री है जो क्रिकेट में बहुत ज़रूरी है, वैसी वो हमारी ज़िंदगी में भी बहुत ज़रूरी है। और फ़र्क इतना है कि क्रिकेट में जब बॉल जाती है बाउंड्री के उस पार तब मज़ा आता है, लेकिन लाइफ में जब आप अपनी बाउंड्री के अंदर रहते हैं और बाउंड्री के अंदर खेलते हैं और आप लोगों को आपकी बाउंड्रीज की कद्र करना और उनकी रिस्पेक्ट करना बताते हैं तो मज़ा आता है लाइफ में। तब आप सुकून से, शांति से जी सकते हैं और इन रिश्तों को निभा सकते हैं। तो ये जो दीवारें बनाना है, मैं ये नहीं बात कर रही हूँ कि आप पूरी एक वॉल ही बना लें और किसी को धराने ना दें, बात नहीं, लेकिन हर चीज़ की, हर रिश्ते की, हर बात की एक सीमा होती है। तो ना तो आप उस सीमा को लांघें, ना किसी और को उस सीमा को लांघने दें। मैं उस बात की बात कर रही हूँ, उन्हें लोगों को, आपको उन्हें बताना चाहिए कि ये बाउंड्री है, ये और ये वो पार नहीं उन्हें करनी चाहिए, वो पार नहीं कर सकते हैं। तो जब ऐसा होगा तभी एक, मुझे ऐसा लगता है और ये मैं अपने पर्सनल तजुर्बे से बता रही हूँ कि ज़िंदगी में जो वो खुशहाली आती है ना, जब आप एक फ्री विल से तब आप रह रहे होते हैं और आपको मालूम है कि आपने क्या हक दूसरों को दिए हैं और क्या नहीं दिए हैं, तो दैट मेक्स लाइफ वेरी सिंपल एंड ईजी फॉर यू। एक्चुअली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर्स, कि उनके लिए, अदर्स के लिए मुझे, मैं नहीं बता रही हूँ कि उनके लिए वो कितना ईजी होगा, पर आपके लिए वो बहुत आसान हो जाता है कि किसी को जब ये बता देना कि आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल नहीं रहने वाले हैं और आप किसी की लाइफ में कोई सेकेंड या थर्ड ऑप्शन नहीं है, कोई बैकअप प्लान नहीं है, जब आप ये लोगों को बता दें और ये उन्हें ये पता लगे आपकी वैल्यू कि आप कितना डिज़र्व करते हैं और आप को उन्होंने चुना या आप उनकी लाइफ में हैं, ये उनके लिए किसी ट्रॉफी से बड़ी बात नहीं है और उनको इस बात का, इसका गर्व होना चाहिए कि वो खुशी से सबके साथ वो शेयर करें कि कितनी अहम शख्सियत या कितने अहम इंसान और चीज़ आप उनके पास में है, और गर्व से बताएं, सीने से लगाएं कि हाँ यार ये मैंने कमाया, ये दोस्त है मेरा, ये रिश्ता है मेरा। इतना जब आपको वैल्यू करें और आपकी इतनी वर्थ रखें, ये आपको उन्हें बताना पड़ेगा और उन्हें यह समझाना पड़ेगा आपके आसपास के लोगों को, जिनको, जो आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं या करीबी लोग हैं, इम्पॉर्टेंट लोग हैं लाइफ में। किसी को भी आप अपने आप को ऐसे हल्के में ना लेने दें, सस्ते में ना ट्रीट हो जाने दें, और ये हमारा हक है कि वैल्यू, सेल्फ वर्थ होना और ख़ुद की वैल्यू करना और ख़ुद की वैल्यू करवाना एक आर्ट भी है और ये आपका हक भी है। तो जब आप ऐसी बाउंड्रीज बनाते हैं और जब आप लोगों को आसपास अपने लोगों को ऐसा प्रिपेयर करते हैं कि उनकी लिमिट क्या है, या आपके साथ वो मजाक भी कर रहे हैं या किस तरीके के बात कर रहे हैं और किस बात के आगे वो बात नहीं कर सकते, ये उन्हें क्योंकि कुछ पता नहीं होता, उन्हें नहीं पता है कि आपको इज्जत कैसी देनी है, किस तरीके की इज्जत आप चाहते हैं या आप किस तरीके के इंसान हैं, आपको उन्हें बताना पड़ेगा। और अगर आपने ये बाउंड्रीज अपने चारों ओर नहीं खेल खींची तो होता क्या लाइफ में कि फिर आपके अनड्यू एडवांटेजेस लोग उठाने लगते हैं और यू नो दे डोंट यू नो वैल्यू यू और दे स्टार्ट टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड एंड यू डोंट वॉन्ट दैट। क्योंकि और जब ये सारी मैं बात कर रही हूँ कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको बोल रही हूँ कि आप बहुत ही ईगोइस्टिक पर्सन बन जाएं, इट्स नॉट अबाउट दैट, इट इज़ रियलाइजिंग योर सेल्फ वर्थ और कैसा आप लोगों को चाहते हैं कि वो आपके साथ ट्रीट करें, इट्स अबाउट दैट। तो वो बाउंड्री होना, एक सटल लाइन होना बहुत ज़रूरी है। और अगर नहीं आपने अभी तक ये शुरुआत करी या अचीव किया तो मेरे ख्याल से ये आपका नया साल का एक चेंज होना चाहिए इंटरनली कि आप सीमाएं खींचें, लोगों को बताएं कि कहाँ तक उन्हें जाना है और कहाँ इसके बाद उनको रुक जाना है। तो आप सोचिए इसके बारे में और सुनिए ये बेहतरीन से दो गाने। मिलती हूँ मैं आप गाने गाने से उसके उस पार मिलूंगी और भी अच्छी बातें करूँगी और बातें बताने वाली हूँ आपको कि व्हाट एल्स कैन बी डन टू चेंज एक्चुअली द गुड चेंज इन द न्यू ईयर, जिसके लिए आप खुशी से और यू नो गर्व के साथ कह सकेंगे कि हाँ नाउ दिस इज़ न्यू मी, दिस इज़ द न्यू वर्जन ऑफ मी। तो मिलती हूँ आपको इन गानों के उस पार और

कि तुझ संग बांधी मैंने ये डोरी रहे, और मेरी डोरी मैंने बांध ली है आप लोगों के दिलों के साथ। हाय, मैं हूं शालिनी और आप सुन रहे हैं मुझे हार्ट टू हार्ट में, ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो। आज एक नए टॉपिक पे बात कर रही हूं, न्यू यू की बात कर रही हूं, जो हर सबका नए साल का एक रेजोल्यूशन होता है, तो उसके बारे में बात कर रही हूं मैं। और शुद्ध देसी रेडियो को और मुझे फॉलो करना ना भूलें अगर आपको मेरी बातें पसंद आ रही हो तो। हर वेंसडे को आप सुन सकते हैं मुझे हार्ट टू हार्ट शो में। आप शुद्ध देसी रेडियो को फॉलो करने के साथ आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, मुझे आप फॉलो कर सकते हैं रेडियो पे, आई मीन फेसबुक पे शालिनी दीक्षित के नाम से, और इंस्टा पे हूँ मैं आरजे शैली के नाम से। तो ओनली फॉलो मी, डोंट सेंड मी द फ्रेंड रिक्वेस्ट, बिकॉज यूजुअली आई डोंट एक्सेप्ट रिक्वेस्ट इफ आई डोंट नो पीपल। सो कमिंग बैक टू आज का टॉपिक, बदलाव की हम लोग बात कर रहे हैं, एक नई शुरुआत की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बात करी कि हम लोगों के लिए एक बाउंड्री की हमने बात करी कि कैसे हम बाउंड्री खींच सकते हैं ताकि हमारी अपनी पर्सनल जीवन की सुख शांति बनी रहे। इट हैज़ नथिंग टू डू विद ईगो और एनीथिंग, तो मैं ईगो की बात नहीं कर रही हूँ। दूसरी एक बात जो बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे लगती है वो है एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टेंस। किस चीज़ का एक्सेप्टेंस? जी हाँ, लोग जैसे हैं उनको तो हम एक्सेप्ट करें ही, लेकिन अगर हमारी ज़िंदगी से कोई चले जा रहा है तो जो एग्जिट्स होते हैं, जो लोगों का चला जाना होता है हमारी लाइफ से, उसको एक्सेप्ट करना होना चाहिए। कि अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हैं, कई बार ऐसा होता है ना कि हम जो चाहते हैं वो एक अलग कहानी होती है, वो अलग किस्म के लोग होते हैं, और हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो टोटल डिफरेंट चीज़ होती है। तो डोंट कन्फ्यूज़ योर वॉन्ट्स एंड योर नीड्स किसी भी लाइफ के किसी भी वॉक में। लेकिन क्योंकि आज इस वक्त मैं बदलाव की बात कर रही हूँ, तो रिश्तों की बात हो या लोगों की बात हो आपके आसपास, तो यू नीड टू मेक अ डिफरेंस। यू नीड टू नो कि आप उस इंसान को चाहते हैं या वो इंसान आपकी ज़रूरत है, उसके बारे में बात करिए। कि हो सकता है कि कई बार हमको बहुत लोग बहुत सारे पसंद आते हैं, कि हर चीज़ उस शख्स के बारे में हमें बहुत अच्छी लग रही होती है, लेकिन हो सकता है कि वो इंसान आपके लिए सही ना हो। हो सकता है कि वो एक रेड फ्लैग्स की दुकान हो। रेड फ्लैग्स की जो मैं बात कर रही हूँ, जो मैं ये रेड लाइट की बात कर रही हूँ, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वो इंसान वैसे बहुत अच्छा हो, लेकिन हो सकता है उनका व्यवहार आपकी तरफ ऐसा हो जो कि आपके लिए सही ना हो, यानी कि वो आपके लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं। वो हो सकता है कि आपके बहुत टॉक्सिक हैं, और कोई देयर इज़ नो एडिशन फ्रॉम देम इन योर लाइफ। तो ऐसे लोग अगर हमारी ज़िंदगी से चले जाएँ, उनका एग्ज़िट हो जाए, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो उस वक्त हमारा काम ये हो कि हम वो दरवाज़ा पकड़ के बंद करके ना रखें और वो दरवाज़ा खोल दें। तो लेट देम गो, लेट पीपल गो, क्योंकि जो लोग आपकी ज़िंदगी में रहना चाहते हैं, सौ बातों की बात यह है कि जो लोग आपकी ज़िंदगी में रहना चाहते हैं वो हर कोशिश करेंगे आपकी लाइफ में रहने की, और जो नहीं रहना चाहते दे विल जस्ट गो नो मैटर हाउ मच यू ट्राई। सो थोड़ा सा समझने वाली बात यहाँ ये है कि थोड़ा अपना भार आप कम करें। आपकी लाइफ में जो इतने सारे लोग हैं, उनमें से अगर कुछ एक आध लोग हैं जिनका रिलेशनशिप की वजह से टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं, और जिनकी वजह से वैल्यू ऐड नहीं हो रहा आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप्स में, सो लेट देम गो। और ओपन द डोर ऑफ योर हार्ट सो दैट न्यू पीपल कैन जस्ट नए लोग आ सकें शायद आपकी लाइफ में। सो एक्सेप्टिंग द एग्जिट्स जो है, स्पेशली जो टॉक्सिक पीपल होते हैं उनकी वजह से, तो अपना आपने जो हो सकता है कि जो डोर पकड़ के रखी है, जो दरवाज़ा बंद करके के रखा हुआ है, तो शायद इसकी वजह से आपके दिल और हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। तो अगर आप जो थोड़ा सा डोर धीरे छोड़ देंगे तो हल्का महसूस करेंगे। तो फर्स्ट
मेकिंग सम बाउंड्रीज एंड देन एक्सेप्टिंग ऑफ पीपल गोइंग फ्रॉम योर लाइफ इफ़ दे आर नॉट एडिंग एनी वैल्यू इन योर लाइफ। बहुत सटल चीज़ें हैं, इसका कहने का मतलब मेरा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप बहुत ही सेल्फ सेंट्रिक और इगोइस्ट पर्सन हो जाएं। कहने का मतलब बस ये है कि थोड़ा सा दिमाग खोल के देखें कि इन सब चीज़ों की वजह से क्या आपकी लाइफ में ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है या पॉजिटिविटी आ रही है। अगर आप इन चीज़ों को, इन जो पॉइंट्स को अगर आप अपनी लाइफ में लागू करें, बाउंड्रीज़ की बात करें, एक्सेप्टेंस की बात करें, तो आई एम श्योर कि वंस यू स्टार्ट लर्निंग दैट, चीज़ें जो हैं और सुंदर और यू नो और नई होती जाएंगी। जो मैं न्यू यू की बात कर रही हूँ, जो नई शुरुआत की बात कर रही हूँ, वो डेफिनेटली उसका बीज रोपण तो ज़रूरी हो जाएगा। मैं तो आगे मेरे पास और भी बहुत सारे टिप्स हैं आपको बताने के लिए, विच आई एम गोइंग टू टेल राइट आफ्टर दीज ट्रैक्स। सो सुनते रहिए हार्ट टू हार्ट में मुझे शालिनी को, ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो।

जी हाँ दोस्तों, ले छलांग छलांग मूवी से गाना सुन रहे थे। मैं हूँ आपकी होस्ट शालिनी, आप सुन रहे हैं मुझे हार्ट टू हार्ट। में बात कर रही हूँ आज नई शुरुआत की। तो नई शुरुआत में अभी तक हमने दो बातों के बारे में जिक्र किया। एक था कि हमें कैसे थोड़ी सी बाउंड्रीज लोगों को बतानी चाहिए हमारे बारे में। दूसरी हमने बात करी कि हमें जो ये लोग हमारी ज़िंदगी से जो चले जाएं, जो जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, जो लोगों का एग्जिट जो होता है वो उसको हम एक्सेप्ट करें। और दूसरी चीज़ जो है एक्सेप्ट करने की बात यह है कि हम किसी से भी कुछ एक्सपेक्ट ना करें। तो ये सारे सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स जो हैं, एक्सपेक्टेशन, एक्सेप्टेंस और एग्जिस्ट का एक्सेप्टेंस जो है, इनके बारे में जो थर्ड चीज़ जो मैं बात कर रही हूँ कि जिस जिससे मुझे बहुत सुकून मिला है लाइफ में, वो है कि किसी से भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना। अभी एक्सेप्टेंस में और होपिंग, दैट्स टू डिफरेंट थिंग्स। आप होप करें लेकिन एक्सपेक्ट ना करें। अब आप सोचेंगे इन दोनों में फ़र्क क्या है, कि होप करना क्या होता है ना, कि दैट इज़ वेरी अ पॉजिटिव थिंग एंड पॉजिटिव आप जोन में हो रहते हो कि आप होप कर रहे हो या प्रे कर रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आप किसी से एक्सपेक्ट करते हो ना समथिंग इन रिटर्न, और फिर आपको वो नहीं मिलता तो वो दुख होता है, बिकॉज देन यू फील वेरी बैड। अगर आप अपने एक कंटेम्पलेशन करें अपने दिमाग में कि एक्सेप्ट और होप में फ़र्क क्या है। होप में यू जस्ट होपिंग कि ऐसे हो जाए, और उसमें अगर आपकी होप पूरी नहीं होती तो उतना, या प्रे पूरी नहीं होती तो उतना दुख नहीं होता, या यू डोंट बिकम अ नेगेटिव जोन में नहीं जाते, या उतना नहीं लगता जितना कि आप किसी इंसान से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हो। आप होप करो उससे हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, हो रहा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन एक्सेप्ट जो एक्सपेक्ट है ना, एक्सपेक्टेंस है जो, वो बहुत डिफरेंट चीज़ होती है। तो लोगों से आप एक्सपेक्ट करना छोड़ दें कि अगर आपने ये काम किसी के लिए किया है तो उसके बदले में उन्हें वो करना होगा, या फिर आप ये चाहें कि फला फला इंसान हमारे साथ ऐसे ऐसे बिहेव करे, ऐसे रहे, तो वो एक्सपेक्टेंसी हो जाती है कि आप लोगों से चाह रहे हैं कि आप उनसे किसी पर्टिकुलर तरीके से आप चाह रहे हैं कि वो उनके आपके साथ में बिहेव करें या बात करें, उसकी बात कर रही हूँ मैं। जब हम ये एक्सपेक्ट करना छोड़ देते हैं ना, तो मुझे लगता है कि बहुत सुकून होता है, रिश्ते बड़े अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि आपको कोई मतलब ही नहीं है। मतलब इन द सेंस कि आपको उनसे कुछ चाहिए नहीं रिटर्न में। तो जब आपको मतलब नहीं होता है ना, तो वो रिश्ते और जो वो प्यार होता है ना, वो बहुत ही दिल से होता है और बहुत ही खूबसूरत है। व्हेन यू डोंट वॉन्ट एनी थिंग फ्रॉम दैट पर्सन, व्हेन यू डोंट वॉन्ट एनी थिंग इन रिटर्न, तो बड़ा सेल्फलेस और बड़ा प्यारा सा ये रिश्ता तब होता है, बिना किसी काम का, बिना किसी कारण का, बिना किसी मतलब का। अब सोचिए कभी कि अचानक से आपको कोई मिले और आपको बोले कि यार मैंने तुम्हें ऐसे ही फ़ोन कर लिया क्योंकि मुझे बस तुम्हारी याद आ रही थी, और ऐसे बात करने का मन हो रहा था, कोई काम नहीं है, बस याद आ रही थी, बात करने का मन हुआ इसलिए फ़ोन किया, तो कितना अच्छा लगता है ना। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे उसका फ़ोन कॉल, वो अचानक से आ गया तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यहीं अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फ़लाना बंदा कॉल करे या मुझे मैसेज करे या मुझे मिलने नहीं आया, आप क्योंकि चाह रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे वो चीज़ कुछ, और वो नहीं हुई तो बुरा लगता है। लेकिन अगर एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे थे और अचानक से हो जाता है, तो कितनी खुशी मिल जाती है। तो बिना किसी मतलब, बिना किसी काम का जो ये रिश्ता होता है, वो बड़ा बड़ा ही अच्छा होता है ये। और उन रिश्तों की वैल्यू ही अलग होती है जिनमें इस टाइप का लेन देन का, एक्सपेक्टेशन का कोई पर्पज़ नहीं लगता, नहीं होता, और बस आपको लगता है कि आप उन लोगों के साथ रहना चाहते हो क्योंकि वो आपको अच्छे लगते हैं, और शायद उनकी जगह फिर आपकी लाइफ में बहुत स्पेशल हो जाती है क्योंकि यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी थिंग फ्रॉम देम, यू आर जस्ट बींग विद देम बिकॉज यू लाइक देम। उनकी कंपनी में रहना अच्छा लगता है, कुछ ऐसे खास चाहिए नहीं कि यार ये कर वो कर, बस अच्छे लग रहे हैं। तो वो निस्वार्थ भाव वाला, बिना किसी किसी बिना कुछ रिटर्न में कुछ चाहने वाला रिश्ता जो है,
बिना किसी एक्सपेक्टेशन का रिश्ता। तो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम पीपल।

0: Advertise your business and events with the Shuddha Desi Radio. It is simple, it is fast, and it works. Simply write to us at info@shuddhadesiradio.com and we will get in touch with you as soon as possible. We grow, you grow, we both grow together.
1: Welcome back, dosto. Sun rahe hain aapki host Shalini ko Heart to Heart program mein. तो जैसे कि मैं बात कर रही हूँ आज डिफरेंट चीज़ों की जो आप अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं जिनकी वजह से एक नई शुरुआत आपकी अपने खुद के साथ में एक नई शुरुआत हो सकती है. तो एक कुछ किस्सा शेयर करना चाहूँगी मैं आपके साथ में कि या लोगों के बहुत से ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं कि कभी आप लोग कॉलेजेस में होते हैं, फिर नौकरियां लग जाती हैं, जॉब के सिलसिले में बाहर चले जाते हैं लोग. और तो जैसी कि बात हुआ करती थी जब स्कूल और कॉलेजेस में रहते हैं कि रोज़ मिलना है, रोज़ फ़ोन पे बात हो रही है, वो होना, और जब आप जॉब के सिलसिले में दूर चले जाते हैं या फिर शादियां हो जाती हैं तो जो थोड़ी कम्युनिकेशन गैप्स आ जाते हैं तो उसके वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है रिश्तों में. और उसकी वजह से ऐसा लगने लगता है कि यार अब क्या ये मेरा दोस्त बदल गया है, अब ये मुझसे उतना प्यार नहीं करता, या व्हाट इज़ दिस कि हमारी दोस्ती इतनी दूर तक ही थी कि बस स्कूल कॉलेज तक थी, अब जॉब लग गई है तो फिर हम बात नहीं कर रहे हैं, या फिर जब हम जब शादियां हो गई तो अपनी अपनी घर गृहस्थी में बिजी हो गए और उतनी फ्रीक्वेंटली बात नहीं हो रही है. तो इसके लिए दो तरीके की बातें हो सकती हैं कि वन इज़ तो दैट पर्सन इज़ रियली नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू, और अब वो सही में अपनी ज़िंदगी में मशगूल हो चुके हैं और अब उन्हें आपके साथ बात करने में इंटरेस्ट नहीं है, टाइम नहीं है, दे डोंट वांट टू पुट दैट काइंड ऑफ टाइम एंड एनर्जी. एंड जो कि ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, कुछ नया मैं बता नहीं रही हूँ, ऐसा होता है बहुत बार. तो ऐसे समय में मुझे ऐसे लगता है कि अगर धीरे धीरे ये फ़ोन कॉल्स बंद हो रहे हैं, बातें करनी बंद हो रही हैं, तो अगर ये रियलाइजेशन हो रहा है कि पहली जैसी बात नहीं है, तो उस वक्त में आप चाहें तो उस इंसान से सवाल कर सकते हैं कि भाई मेरे को ऐसे रियलाइज़ हो रहा है, क्या ये है या ये यहीं तक है, या फिर कुछ ऐसा है कि हम चेंज कर सकते हैं इसमें. और अगर आपको अगली तरफ से जवाब प्रॉपर नहीं मिल रहा है तो कई बार ऐसा होता है कि जो ये अनसेड थिंग्स होती हैं वो हमारे लिए एक सिग्नल होता है और हमें समझ में आ जाना चाहिए कि अच्छा हाँ ठीक है, अब अगला बंदा ज़रूरी नहीं कि उसको रिलेशन और ख़राब करने हैं, तो दे आर जस्ट नॉट सेइंग एनीथिंग, सो जस्ट अंडरस्टैंड. अंडरस्टैंडिंग द नो इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि नो और अंडरस्टैंडिंग नॉट saying anything also it's very important to know कि अगर अगला बंदा कुछ बोल नहीं रहा है तो वो भी आपको उसकी जो खामोशी समझनी चाहिए कि भाई मे बी दिस इज़ अ सिग्नल फॉर मी टू जस्ट स्टॉप एंड डोंट वरी अबाउट दैट एंड डोंट बग दैट पर्सन. और एक दूसरी टाइप की सिचुएशन ये भी हो सकती है कि हाँ भाई दोनों लोग अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं नॉल, लेकिन जब भी मौका मिल रहा है, बिल्कुल जब बात हो रही तो ऐसे खुल के बात हो रही है कि जैसे कभी बात बंद ही नहीं हुई थी, और दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में मशगूल हैं, मशहूर हैं, वो फ्रेंड्स हैं, शादी हो गई है, जॉब है, बट सेम सिचुएशन. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उनकी रिश्ता और उनकी वो दोस्ती, उनका वो कनेक्शन वहाँ टूटा ही नहीं है, दे आर जस्ट बिजी इन देयर ओन वर्ल्ड, बट जब टाइम मिल रहा है तो वो वैसे कि जैसे बात भी कर रहे हैं. तो ये समझना कि अगर अगला बात नहीं कर रहा है तो उनकी खामोशी का मतलब क्या है, वो बहुत ज़रूरी होता है. और फिर अगर आपको लग रहा है कि कोई आपकी लाइफ से जा रहा है, दूर हो रहा है, और आपकी कोशिशों करने के बाद में भी नहीं रुक रहा है, तो लाइक आई सेड, इफ़ दे वांट टू गो जस्ट लेट देम गो. इट्स नॉट अबाउट बीइंग सेल्फिश, इट्स जस्ट इट्स अबाउट योर ओन पीस ऑफ माइंड की बात होती है, आपकी खुद की शांति सुकून की बात यह है कि इफ़ दे आर जस्ट गोइंग लेट देम गो, एंड इफ़ नॉट जस्ट बी हैप्पी. जब भी आपकी बात हो रही है आप उन बातों में खुश रहें, और जितनी भी बात हो रही है, सो जस्ट अगेन द कम्स द सेम थिंग कि डोंट एक्सपेक्ट टू मच कि नहीं पहले जैसे घंटों हमारी बातें होनी चाहिए थी. और इफ़ दे आर जस्ट गोइंग That's fine. Accept the exit, or if they are there, just be happy with whenever you guys are talking. So that is my take on that, actually.

हाय, मैं हूँ शालिनी और आप सुन रहे हैं मुझे हार्ट टू हार्ट में, ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो। आपकी दिल की बातें हमारे दिल से। शुद्ध देसी रेडियो को और मुझे फॉलो करना ना भूलें, और ताकि अगले वेंसडे को आप हमारी ये अच्छी वाली बातें मिस ना कर सकें। मुझे मैसेज कर सकते हैं आप यहाँ पे फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। तो नया साल का जो मेरा रिजोल्यूशन है, जो मेरी नई शुरुआत है, इमोशनल रिजोल्यूशन की बात कर रही हूँ कि अगर मुझे मेरी खुशियों का इंश्योरेंस करना है कि मेरे मन की शांति जो है, जो मेरी वेल बीइंग है, अच्छी सेहत है, इसका रिजोल्यूशन लूँगी कि मैं मेंटली और इमोशनली खुश ज़्यादा और रह पाऊँ और स्ट्रांग हो पाऊँ। ये मेरा है नए साल का रिजोल्यूशन। और मन की बात करना, मन को स्ट्रांग करना, क्योंकि ऐसा है ना कि ये जो जिम जाने की बात होती है, कसरत करने की बात होती है, कैलोरीज बर्न कर देते हैं, वज़न, शारीरिक वज़न तो हम कम कर सकते हैं, उसकी बात हम बहुत करते हैं, लेकिन ये जो मेंटल ब्लॉक रहता है ना, ये जो मानसिक वज़न कम करने के लिए ये सारे व्यायाम करने की ज़रूरत होती है, जो कि मैंने आपको बताए हैं। एक रीकैप कर देती हूँ कि पहले मैंने बात करी कि बाउंड्रीज बनानी अपने चारों ओर, दूसरा कि एक्सेप्टेंस एंड लेटिंग गो ऑफ टॉक्सिक पीपल फ्रॉम योर लाइफ, और तीसरा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और मेरे लिए बहुत फेवरेट है, जो कि मैं बहुत लागू करती हूँ, कि नॉट एक्सपेक्टिंग थिंग्स फ्रॉम पीपल। इट्स डिफ़िकल्ट ऑल टुगेदर, आप नहीं कर सकते कि मैं इतना महान इंसान बन गई हूँ कि किसी से कुछ एक्सपेक्ट ना ही करूँ, लेकिन वो जो उसकी जो तासीर होती है वो कम होती जा रही है, यानी कि लेवल कम होता जा रहा है एक्सपेक्ट करने का। तो धीरे धीरे इट्स अ वर्क इन अ प्रोग्रेस। तो बस यही चीज़ें, तीन जो चीज़ें करनी है आपको, फॉलो करनी है। कोशिश करें कि जो ये पर्पज़ है या कोई रीज़न है रिश्ते निभाने का, कि क्यों रहना है, क्यों दोस्ती है, क्यों प्यार है, उनसे उन पर्पज़ और रीज़न्स को अगर हम निकाल के देखें तो सिर्फ प्यार के रिश्ते रह जाते हैं। कम होंगे, शायद एक दो ही रहेंगे, लेकिन बड़े कमाल के रिश्ते रहेंगे। तो ये है मेरे रेजोल्यूशंस और ये है मेरी, ये तीन जिनको मैं बोलूँगी कि टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर बीइंग न्यू यू। और चलते चलते ये कुछ लाइनें हैं, बहुत पीछे बर्फ पड़ रही थी तो बड़ी सुंदर सी लाइनें हैं, काफ़ी मोटिवेशनल लाइन्स हैं, तो मुझे लग रहा है कि इस प्रोग्राम के लिए बहुत ऐप्ट है कि बर्फ़ में खुद को बदल कर देखना, फिर किसी सूरज पे चल कर देखना, फेंक दो सर से ये चादर साए की, धूप फिर चेहरे पे मल कर देखना, दर्द फूलों का समझने के लिए कांटे हाथों से मसल कर देखना, कद हमारे साए का भी है बड़ा, धूप से अपनी तुम निकल कर देखना, अहमियत क्या है तेरे किरदार की, खुद कहानी से निकल कर देखना। और आखिरी दो लाइनें हैं कि चांद का मुश्किल सफ़र कैसे लिखूं, आप खुद पैरों पे चल कर देखना। इन लाइनों के साथ मैं लेती हूँ अलविदा फ्रॉम दी हार्ट टू हार्ट प्रोग्राम। मिलूँगी अगले हफ्ते बहुत ही बढ़िया बेहतरीन टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अलविदा लेती हूँ आपसे। ये आखिरी गाने के साथ आप सभी लोगों को छोड़े जा रही हूँ, अलविदा लेती हूँ आप लोगों से। हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना बहुत बहुत बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए मेरे लिए।

0: लाइक एंड फॉलो अवर एफपी पेज शुद्ध देसी रेडियो एंड ड्रॉप कमेंट्स एंड फीडबैक।
1: हेलो नेशनल, अब आप लेटेस्ट

आप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, महकना और महकाना तो काम है खुशबू का। खुशबू नहीं मोहताज होती कद्रदानों की।

चाहिए माँ के हाथ का खाना और बॉलीवुड का गाना। खाना तो हम आपके लिए नहीं लाए हैं, लेकिन गाना जरूर लाए हैं, ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो। दोस्तों, ये है एक नया महीना, नया हफ्ता और हफ्ते का एक नया दिन, और इस नए दिन में मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नया सुविचार। कहीं पढ़ा था मैंने कि टू मच ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड। हमेशा अगर आप आराम के चक्कर में रहेंगे तो आप आलसी हो जाएंगे, अगर हमेशा परफेक्शन के चक्कर में रहेंगे तो बहुत गुस्सैल बन जाएंगे, और अगर हमेशा अमीर बनने के, पैसे कमाने के चक्कर में रहेंगे तो बहुत लालची, बहुत ग्रीडी बन जाएंगे। तो टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ नॉट

आदमी कहीं भी रहे, दो चीजें कभी नहीं भूल सकते, एक है माँ और दूसरा सिनेमा। माँ के आशीर्वाद से अब सिनेमा आ गया है नैशविल के और भी नजदीक। मिडिल टेनेसी का ऑनलाइन रेडियो, शुद्ध देसी रेडियो।

मुझसे ना हो पाएगा। कौन बोला

आप सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर 1 ऑनलाइन रेडियो स्टेशन, शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। मिडिल टेनेसी का नंबर 1 ऑनलाइन रेडियो स्टेशन, शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।

सुविचार। एक मूर्ख व्यक्ति बार बार एक ही गलती करता है, एक ही मिस्टेक करता है और उससे कभी नहीं सीखता। एक कम बुद्धिमान, एक लेस इंटेलिजेंट इंसान वो है जो अपनी गलतियों से सीखता है और उन्हें दोबारा रिपीट नहीं करता है। मगर एक असल में समझदार और बुद्धिमान इंसान वो है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है, अपनी गलतियों से तो सीखता ही है, दूसरों की गलतियों से भी सीखता है और रिपीट नहीं करता अपनी सेम मिस्टेक्स।

जैसे दूर हूँ तो क्या, देसी गाना भी सुनने को नहीं मिलेगा? अरे पक गया था अंग्रेजी पक पक सुन के, अब मिला है दिल को सुकून, क्योंकि आ गया है शुद्ध देसी रेडियो। अच्छा है, सुनते रहिए शुद्ध देसी रेडियो।

0: मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।
1: हम लेके आते हैं आपके लिए शुद्ध देसी रेडियो पे एवरी सैटरडे एक्शन पैक्ड शोज, और वीकडेज में हम आपके साथ होते हैं

0: अगर सामने वाले ने किसी ने कोई गलती कर दी तो उसको माफ़ करना, उसको फॉरगिव करना, उसको क्षमा कर देना, वो बात को भूल जाना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है ना। अगर आपके साथ भी ये बात सच है कि आप किसी ने आपके लिए कोई गलत काम कर दिया है और आप ऐसा उसके बारे में सोच रहे हैं, तो अगर आप एक छोटी सी बात ध्यान में रखें कि सामने वाले ने ये गलती जानबूझ के नहीं करी है, दैट वॉज़न्ट दैट पर्सन्स इंटेंट टू डू दैट मिस्टेक, अगर आप ये बात अपने ध्यान में रखेंगे तो शायद आपको अगले इंसान को माफ़ करना, क्षमा करना और या फिर इस बात को भूल जाना थोड़ा सा, ज़रा सा आसान हो सकता है। तो थोड़ी सी एक छोटी सी बात है जिसको आप अगर ध्यान में रखें तो थोड़ी सी लाइफ और आसान हो जाएगी। और ऐसी ही छोटी छोटी सी और अच्छी बातों को, सुविचारों को सुनने के लिए, जानने के लिए सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।
1: सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो, द ओनली बॉलीवुड रेडियो स्टेशन इन

हिंदुस्तानी आदमी दो चीजें कभी नहीं भूलता, एक है माँ और दूसरा सिनेमा। माँ के आशीर्वाद से अब हिंदी गाने सुनना हो गया है और भी आसान। शुद्ध देसी रेडियो का iOS का ऐप डाउनलोड करो और गाने सुनना शुरू कर दो। शुद, शुद,

0: सौदागर हैं। जानी, नैशविल में एक नया ऑनलाइन रेडियो शुरू हुआ है, शुद्ध देसी रेडियो। मेरिल टेनेसी के इस ऑनलाइन रेडियो को सुनते रहिए और मेरी तरह आप भी अपने पसंदीदा हिंदी गानों का मजा लीजिए। समझ गए जानी?
1: तो दोस्तों, आप i65 पे हो या i40 पे हो या फिर i440 हो या फिर i24 हो या फिर कोई सरफेस रोड हो, आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे शुद्ध देसी रेडियो के जरिए।

आज का सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। यदि किसी इंसान की कोई भी बात आपको बुरी लगे तो उसे दो तरह से सोच के देखिए। यदि वो इंसान ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी ज़िंदगी में, तो उस बात को भूल जाइए। और अगर वो बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो उस व्यक्ति को, उस इंसान को भूल जाइए। दोस्तों, आप हैं हमारे साथ हमारे रश आवर प्रोग्राम में ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो। और मुझे उम्मीद है कि आपने हमारा ऐप iOS का ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ ऐप स्टोर में जाएं और टाइप करें SHUDDH स्पेस DESI स्पेस RADIO और वहाँ पे जाके आप हमारा शुद्ध देसी रेडियो का iOS का ऐप डाउनलोड कीजिए और यू विल एक्सपीरियंस अ डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूज़िक एंड यू विल हैव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू रेट द ऐप।

का सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। दवा जेब में नहीं जाके शरीर में जाए तो असर करती है, वैसे ही अच्छे विचार मोबाइल में ना जाके अगर आपके जीवन में आपकी लाइफस्टाइल में उतरें तो ही उनका असर होता है।

0: अपने। आप सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।
1: एडवर्टाइज योर बिजनेस एंड इवेंट्स विद शुद्ध देसी रेडियो। इट इज सिंपल, इट इज फास्ट एंड इट वर्क्स। सिंपली राइट टू अस एट info@shuddhdesireadio.com। इट इज info@shuddhdesireadio.com एंड वी विल गेट इट।

0: सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन, शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप अ स्माइल।
1: आप सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन, शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।

0: हिंदुस्तानी आदमी दो चीजें कभी नहीं भूलता, एक है माँ और दूसरा सिनेमा। माँ के आशीर्वाद से अब हिंदी गाने सुनना हो गया है और भी आसान। शुद्ध देसी रेडियो का iOS का ऐप डाउनलोड करो और गाने सुनना शुरू कर दो।
1: हेलो नेशनल, अब आप लेटेस्ट हिंदी फिल्मों के गाने और आसानी से सुन सकते हैं, क्योंकि अब आगे आए मिडिल टेनेसी का अपना ऑनलाइन रेडियो शुद्ध देसी रेडियो। और हाँ, हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करते रहिए।

का सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। दवा जेब में नहीं जाके शरीर में जाए तो असर करती है, वैसे ही अच्छे विचार मोबाइल में ना जाके अगर आपके जीवन में आपकी लाइफस्टाइल में उतरें तो ही उनका असर होता है।

देसी रेडियो इतना शुद्ध जैसे बारिश की पहली बौछार, जैसे माँ के हाथ का अचार, जैसे नन्हे बच्चे की किलकारी, जैसे मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू।

वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, खुशबू नहीं मोहताज होती कद्रदानों की।

0: शुद्ध देसी रेडियो के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है।
1: शुद्ध देसी रेडियो, इतना शुद्ध जैसे माँ के हाथ का खाना,
0: जैसे पहले बारिश की सोंधी खुशबू,
1: जैसे नन्हे बच्चे की किलकारी।
0: शुद्धता से भरपूर आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।

अगर सामने वाले ने किसी ने कोई गलती कर दी तो उसको माफ़ करना, उसको फॉरगिव करना, उसको क्षमा कर देना, वो बात को भूल जाना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है ना। अगर आपके साथ भी ये बात सच है कि आप किसी ने आपके लिए कोई गलत काम कर दिया है और आप ऐसा उसके बारे में सोच रहे हैं, तो अगर आप एक छोटी सी बात ध्यान में रखें कि सामने वाले ने ये गलती जानबूझ के नहीं करी है, दैट वॉज़न्ट दैट पर्सन्स इंटेंट टू डू दैट मिस्टेक, अगर आप ये बात अपने ध्यान में रखेंगे तो शायद आपको अगले इंसान को माफ़ करना, क्षमा करना और या फिर इस बात को भूल जाना थोड़ा सा, ज़रा सा आसान हो सकता है। तो थोड़ी सी एक छोटी सी बात है जिसको आप अगर ध्यान में रखें तो थोड़ी सी लाइफ और आसान हो जाएगी। और ऐसी ही छोटी छोटी सी और अच्छी बातों को, सुविचारों को सुनने के लिए, जानने के लिए सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो। शुद्ध, शुद्ध।

0: तो दोस्तों, आपको पता है हम आपके लिए लेके आते हैं वीकेंड में आपकी फरमाइश का कार्यक्रम। तो आपकी फरमाइश भेजना अब बहुत ही आसान हो गया है। बोलो कैसे? यू कैन डाउनलोड आवर iOS ऐप और उसमें एक फीचर है रिक्वेस्ट सॉन्ग, जहाँ पे आप आपकी रिक्वेस्ट भेज सकते हो एंड वी विल ट्राई टू प्ले दैट ऑन आवर आपकी फरमाइश शो। तो सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है।

0: के साथ सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजना अब है और भी आसान. सिंपली ऑल यू हैव टू डू इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल डाउनलोड द ऐप. वहाँ पे सॉन्ग रिक्वेस्ट का विंडो है, आप वहाँ पे जा सकते हैं, सॉन्ग का नाम लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, किसी को आप डेडिकेट करना चाहते हैं वो सब लिख सकते हैं. एंड एवरी थिंग इज़ ऑन योर फिंगर टिप्स गाइज, सो प्लीज़ डाउनलोड द ऐप एंड सेंड अस रिक्वेस्ट.
1: आप सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो. सुनते रहिए and always keep smiling.

0: का सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। यदि किसी इंसान की कोई भी बात आपको बुरी लगे तो उसे दो तरह से सोच के देखिए। यदि वो इंसान ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी ज़िंदगी में, तो उस बात को भूल जाइए। और अगर वो बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो उस व्यक्ति को, उस इंसान को भूल जाइए।
1: यू आर लिसनिंग टू शुद्ध देसी रेडियो। प्लीज लाइक आवर फेसबुक पेज एंड लेट अस नो हाउ वी डूइंग।
2: And do check us out at www.shuddhdesiradio.com for latest updates.

हेलो नैसल, अब आप लेटेस्ट हिंदी फिल्मों के गाने और आसानी से सुन सकते हैं, क्योंकि अब आगे आया मिडिल टेनेसी का अपना ऑनलाइन रेडियो, शुद्ध देसी रेडियो। और हाँ, हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करते रहिए।

0: आदमी कहीं भी रहे दो चीजें कभी नहीं भूल सकते, एक है माँ और दूसरा सिनेमा। माँ के आशीर्वाद से अब सिनेमा आ गया है नैशविल के और भी नजदीक। मिडिल टेनेसी का ऑनलाइन रेडियो शुद्ध देसी रेडियो।
1: मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो, सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।

0: दोस्तों, ये है एक नया महीना, नया हफ्ता और हफ्ते का एक नया दिन। और इस नए दिन में मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नया सुविचार। कहीं पढ़ा था मैंने कि टू मच ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड। हमेशा अगर आप आराम के चक्कर में रहेंगे तो आप आलसी हो जाएंगे, अगर हमेशा परफेक्शन के चक्कर में रहेंगे तो बहुत गुस्सैल बन जाएंगे, और अगर हमेशा अमीर बनने के, पैसे कमाने के चक्कर में रहेंगे तो बहुत लालची, बहुत ग्रीडी बन जाएंगे। तो टू मच ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड।
1: देसी रेडियो की टीम आपके लिए लेके आएगी बॉलीवुड के हर जमाने के सॉन्ग, पुराने जमाने से लेके नए जमाने तक, गजल से लेके न्यू हिट्स तक, और वो भी नैशविल कैरेक्टर, नैशविल फ्लेवर के साथ।
2: जी हाँ दोस्तों, चाहे दिन हो या रात, वीकेंड हो या वीकडे, आप ऑफिस के ट्रैफिक में फंसे हो या घर के काम में बिजी हो, हमारा रेडियो स्टेशन आपके साथ होगा हमेशा, एक बेस्ट फ्रेंड की तरह।

सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप

का सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। कुएं में उतरने वाली बाल्टी यदि झुकती है तो भर के बाहर आती है। जीवन का भी यही गणित, यही लेखा जोखा है कि जो झुकता है वही हासिल करता है। दादागिरी तो हम मरने के बाद भी करेंगे, जब लोग पैदल चलेंगे और हम कंधों

0: शुद्ध देसी रेडियो, योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन ऑफ बॉलीवुड म्यूजिक।
1: हिंदुस्तानी आदमी कहीं भी रहे, दो चीजें कभी नहीं बोल सकते, एक है माँ और दूसरा सिनेमा। माँ के आशीर्वाद से अब सिनेमा आ गया है नैशविल के और भी नजदीक। मिडिल टेनेसी का ऑनलाइन रेडियो शुद्ध

चाहिए माँ के हाथ का खाना और बॉलीवुड का गाना। खाना तो हम आपके लिए नहीं लाए हैं, लेकिन गाना जरूर लाए हैं, ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो। हेलो म्यूजिक सिटी, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी, और आप सुन रहे हैं आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो। कीप ऑन पोस्टिंग एंड कमेंटिंग ऑन आवर फेसबुक पेज, और दोस्तों अब आप हमारे शुद्ध देसी रेडियो को ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, और हमारा ट्विटर हैंडल है SHUDDHDESIRADIO, जो कि हमारे रेडियो का नाम है।

अच्छा है, देश से दूर हूँ तो क्या देसी गाना भी सुनने को नहीं मिलेगा हा? अरे पक गया था अंग्रेजी पक पक सुन के, अब मिला है दिल को सुकून क्योंकि आ गया है शुद्ध देसी रेडियो। अच्छा है, सुनते रहिए शुद्ध।

सुविचार। एक मूर्ख व्यक्ति बार बार एक ही गलती करता है, एक ही मिस्टेक करता है और उससे कभी नहीं सीखता। एक कम बुद्धिमान, एक लेस इंटेलिजेंट इंसान वो है जो अपनी गलतियों से सीखता है और उन्हें दोबारा रिपीट नहीं करता है। मगर एक असल में समझदार और बुद्धिमान इंसान वो है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है। अपनी गलतियों से तो सीखता ही है, दूसरों की गलतियों से भी सीखता है और रिपीट नहीं करता अपनी सेम मिस्टेक्स।

0: सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। दवा जेब में नहीं जाके शरीर में जाए तो असर करती है, वैसे ही अच्छे विचार मोबाइल में ना जाके अगर आपके जीवन में आपकी लाइफस्टाइल में उतरें तो ही उनका असर होता है।
1: देसी को चाहिए माँ के हाथ का खाना और बॉलीवुड का गाना। खाना तो हम आपके लिए नहीं लाए हैं लेकिन गाना जरूर लाए हैं, ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो।

हम सौदागर हैं, यानी नैशविल में एक नया ऑनलाइन रेडियो शुरू हुआ है, शुद्ध देसी रेडियो। मेरिल टेनेसी के इस ऑनलाइन रेडियो को सुनते रहिए और मेरी तरह आप भी अपने पसंदीदा हिंदी गानों का मजा लीजिए। समझ गए?

0: आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो, द ओनली बॉलीवुड रेडियो स्टेशन इन साउथ ईस्ट. लाइक एंड फॉलो अवर फेसबुक पेज शुद्ध देसी रेडियो एंड लीव अस फीडबैक देयर.
1: सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो. सुनते रहिए एंड ऑलवेज.

0: सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो, द ओनली बॉलीवुड रेडियो स्टेशन इन साउथ ईस्ट. लाइक एंड फॉलो आवर फेसबुक पेज शुद्ध देसी रेडियो एंड ड्रॉप कमेंट्स एंड फीडबैक देयर. ऑल्सो डाउनलोड आवर iOS ऐप और लॉग ऑन टू www.shuddhdesiradio.com फॉर नॉन स्टॉप म्यूजिक.
1: सुन रहे हैं मिडिल डालेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो. सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग.

आज का सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। कुएं में उतरने वाली बाल्टी यदि झुकती है तो भर के बाहर आती है। जीवन का भी यही गणित, यही लेखा जोखा है कि जो झुकता है वही हासिल करता है। दादागिरी तो हम मरने के बाद भी करेंगे जब लोग पैदल चलेंगे और हम कंधों। आज का सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। दवा जेब में नहीं जाके शरीर में जाए तो असर करती है, वैसे ही अच्छे विचार मोबाइल में ना जाके अगर आपके जीवन में, आपकी लाइफस्टाइल में उतरें तो ही उनका असर होता है।

हेलो नैसल, अब आप लेटेस्ट हिंदी फिल्मों के गाने और आसानी से सुन सकते हैं, क्योंकि अब आगे आया मिडिल टेनेसी का अपना ऑनलाइन रेडियो, शुद्ध देसी रेडियो। और हाँ, हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करते रहिए। आओ

0: अरे भाई, ये खासी नहीं, एक फिल्मी अंदाज था। और ऐसी ही सुपरहिट अंदाज के साथ हम लाएंगे बेस्ट बॉलीवुड म्यूजिक आप सबके लिए। तो सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो, द ओनली बॉलीवुड रेडियो स्टेशन इन साउथ।
1: देश से दूर हूँ तो क्या, देसी गाना भी सुनने को नहीं मिलेगा? अरे पक गया था अंग्रेजी पक पक सुन के, अब मिला है दिल को सुकून, क्योंकि आ गया है शुद्ध देसी रेडियो। अच्छा है, सुनते रहिए।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

0: शुद्ध देसी रेडियो द नंबर वन ऑनलाइन इंडियन रेडियो इन यूएसए विच नॉट ओनली प्लेज बॉलीवुड सॉन्ग्स बट ऑल्सो वेरी पॉपुलर फॉर इट्स रीजनल एंड लोकल फ्लेवर्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको सुनना है कुछ रीजनल सॉन्ग्स तो आप सुन सकते हैं ओनली ऑन शुद्ध देसी।
1: सामने वाले ने किसी ने कोई गलती कर दी तो उसको माफ करना, उसको फॉरगिव करना, उसको क्षमा कर देना, वो बात को भूल जाना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है ना। अगर आपके साथ भी ये बात सच है कि आप किसी ने आपके लिए कोई गलत काम कर दिया है और आप ऐसा उसके बारे में सोच रहे हैं, तो अगर आप एक छोटी सी बात ध्यान में रखें कि सामने वाले ने ये गलती जानबूझ के नहीं करी है, दैट वॉज़न्ट दैट पर्सन्स इंटेंट टू डू दैट मिस्टेक, अगर आप ये बात अपने ध्यान में रखेंगे तो शायद आपको अगले इंसान को माफ़ करना, क्षमा करना और या फिर इस बात को भूल जाना थोड़ा सा, ज़रा सा आसान हो सकता है। तो थोड़ी सी एक छोटी सी बात है जिसको आप अगर ध्यान में रखें तो थोड़ी सी लाइफ और आसान हो जाएगी। और ऐसी ही छोटी छोटी सी और अच्छी बातों को, सुविचारों को सुनने के लिए, जानने के लिए सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी।

0: फ्रेंड्स, होप यू गाइस आर लाइकिंग आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो. प्लीज डू टेल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली अबाउट द शुद्ध देसी रेडियो एंड डू लाइक अस ऑन आवर फेसबुक पेज एंड टेल अस हाउ वी डूइंग. शुद्ध देसी रेडियो
1: कहीं भी रहे, दो चीजें कभी नहीं बोल सकते, एक है माँ और दूसरा सिनेमा. माँ के आशीर्वाद से अब सिनेमा आ गया है नैशविल के और भी नजदीक. मिडिल टेनेसी का ऑनलाइन रेडियो शुद्ध

चाहिए माँ के हाथ का खाना और बॉलीवुड का गाना। खाना तो हम आपके लिए नहीं लाए हैं, लेकिन गाना जरूर लाए हैं, ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो।

0: स्टूडियोज ऑफ शुद्ध देसी रेडियो। मैं हूँ आपका होस्ट अनिरुद्ध
1: और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी। सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।
2: अट्रैक्ट एवरीथिंग दैट यू रिक्वायर। इफ इट इज मनी यू नीड, यू विल अट्रैक्ट इट। इफ इट इज पीपल यू नीड, यू विल अट्रैक्ट इट। You have got to pay attention to what you are attracted to, because as you hold images of what you want, you are going to be attracted to things and they are going to be attracted to you. But it literally moves into physical reality with and through you, and it does that by law, by the law of attraction.

सौदागर है यानी नैशविल में एक नया ऑनलाइन रेडियो शुरू हुआ है, शुद्ध देसी रेडियो। मेरिल टेनेसी के इस ऑनलाइन रेडियो को सुनते रहिए और मेरी तरह आप भी अपने पसंदीदा हिंदी गानों का मजा लीजिए। समझ गए यानी?

0: आदमी दो चीजें कभी नहीं भूलता, एक है माँ और दूसरा सिनेमा। माँ के आशीर्वाद से अब हिंदी गाने सुनना हो गया है और भी आसान। शुद्ध देसी रेडियो का iOS का ऐप डाउनलोड करो और गाने सुनना शुरू कर दो।
1: आपने आप सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।

0: करने। आप सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो, सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।
1: वक्त हो चला है आज के सुविचार का, जो कि लाई हूं मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी। बदलाव ही प्रकृति का नियम है। चरखे पे घूमती मिट्टी को देखकर शायद हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि कुछ समय के बाद इससे क्या निकलने वाला है। हो सकता है कि कोई घड़ा निकले, या ये भी हो सकता है कि कोई फूलदान निकले। आम सी दिखने वाली किसी भी चीज़ की कीमत हम उस समय समझ पाते हैं जब वो अपने पुराने रूप को छोड़कर एक नए खूबसूरत अवतार के साथ हमारे सामने आ जाती है। तो ऐसी ही प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातों को सुनने के लिए सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।
2: हाँ दे युवा, चलो आज पिक्चर देखते हैं।
3: नहीं नहीं पिक्चर नहीं, आज हम लोग डिस्को जाएंगे।
2: नहीं
3: चलो जल्दी से चेंज कर लो अभी।
2: क्यों, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस?
3: ये भी कोई कपड़े हैं, बिल्कुल बेकार लग रहे हैं।
2: बेकार तो तुम

आपने। आप सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।

सुविचार। एक मूर्ख व्यक्ति बार बार एक ही गलती करता है, एक ही मिस्टेक करता है और उससे कभी नहीं सीखता। एक कम बुद्धिमान, एक लेस इंटेलिजेंट इंसान वो है जो अपनी गलतियों से सीखता है और उन्हें दोबारा रिपीट नहीं करता है। मगर एक असल में समझदार और बुद्धिमान इंसान वो है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है, अपनी गलतियों से तो सीखता ही है, दूसरों की गलतियों से भी सीखता है और रिपीट नहीं करता अपनी सेम मिस्टेक्स।

सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। यदि किसी इंसान की कोई भी बात आपको बुरी लगे तो उसे दो तरह से सोच के देखिए। यदि वो इंसान ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी ज़िंदगी में, तो उस बात को भूल जाइए। और अगर वो बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो उस व्यक्ति को, उस इंसान को भूल जाइए। आज का सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। कुएं में उतरने वाली बाल्टी यदि झुकती है तो भर के बाहर आती है। जीवन का भी यही गणित, यही लेखा जोखा है कि जो झुकता है वही हासिल करता है। दादागिरी तो हम मरने के बाद भी करेंगे जब लोग पैदल चलेंगे और हम कंधों। शुद्ध देसी रेडियो, इतना शुद्ध जैसे बारिश की पहली बौछार, जैसे माँ के हाथ का अचार, जैसे नन्हे बच्चे की किलकारी, जैसे मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू।

सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइल।

0: share a beautiful quote from the book The Secret. You become what you think about the most, but you also attract what you think about the most. यानी कि आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं, क्योंकि जो आप सोचते हैं उसे ही आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. सो वॉच वॉट यू थिंक.
1: हम सौदागर हैं, यानी नैशविल में एक नया ऑनलाइन रेडियो शुरू हुआ है, शुद्ध देसी रेडियो. मेरिल टेनेसी के इस ऑनलाइन रेडियो को सुनते रहिए और मेरी तरह आप भी अपने पसंदीदा हिंदी गानों का मजा लीजिए. समझ

लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, महकना और महकाना तो काम है खुशबू का। खुशबू नहीं मोहताज होती कद्रदानों की।

बोले लाउड बोली नेचर बोला दर्शाते हैं, बॉर्डर पे रक्षा करके खेती सबको खाना खिलाते हैं, के लाउड बोली नेचर बोला दर्शाते हैं, बॉर्डर पे रक्षा करके खेती सबको खाना खिलाते हैं। हम हरियाणा से हैं जनाब, हम अपने ब्लड ग्रुप में लेजेंड लिखवाते हैं।

ये है एक नया महीना, नया हफ्ता और हफ्ते का एक नया दिन। और इस नए दिन में मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नया सुविचार। कहीं पढ़ा था मैंने कि टू मच ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड। हमेशा अगर आप आराम के चक्कर में रहेंगे तो आप आलसी हो जाएंगे, अगर हमेशा परफेक्शन के चक्कर में रहेंगे तो बहुत गुस्सैल बन जाएंगे, और अगर हमेशा अमीर बनने के, पैसे कमाने के चक्कर में रहेंगे तो बहुत लालची, बहुत ग्रीडी बन जाएंगे। तो टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ नॉट गुड।

अच्छा है, देश से दूर हूँ तो क्या देसी गाना भी सुनने को नहीं मिलेगा। अरे पक गया था अंग्रेजी पक पक सुन के, अब मिला है दिल को सुकून क्योंकि आ गया है शुद्ध देसी रेडियो। अच्छा है, सुनते रहिए।

0: आज का सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। यदि किसी इंसान की कोई भी बात आपको बुरी लगे तो उसे दो तरह से सोच के देखिए। यदि वो इंसान ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी ज़िंदगी में, तो उस बात को भूल जाइए। और अगर वो बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो उस व्यक्ति को, उस इंसान को भूल जाइए।
1: आओ, हेलो नेशनल, अब आप लेटेस्ट हिंदी फिल्मों के गाने और आसानी से सुन सकते हैं, क्योंकि अब आगे आया मिडिल टेनेसी का अपना ऑनलाइन रेडियो, शुद्ध देसी रेडियो। और हाँ, हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करते रहिए। आओ।

0: का समय और ट्रैफिक के हाहाकार से परेशान नहीं होने का। चक्का जाम में हम सुनाएंगे आपको धमाकेदार बॉलीवुड के गाने फ्रॉम 5 to 7 PM सेंट्रल टाइम जोन पर। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी
1: का सुविचार। आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। दवा जेब में नहीं जाके शरीर में जाए तो असर करती है, वैसे ही अच्छे विचार मोबाइल में ना जाके अगर आपके जीवन में आपकी लाइफस्टाइल में उतरें तो ही उनका असर होता है।

0: are tuned into Shuddh Desi Radio, the only Bollywood radio station in Southeast.
1: इंसानी आदमी दो चीजें कभी नहीं भूलता, एक है माँ और दूसरा सिनेमा। माँ के आशीर्वाद से अब हिंदी गाने सुनना हो गया है और भी आसान। शुद्ध देसी रेडियो का iOS का ऐप डाउनलोड करो और गाने सुनना शुरू कर दो।

0: रिमेम्बर द ड्रिल?
1: यस सर, आज का पासपोर्ट क्या है?
2: लग जा गले के तेरी हंसी रात होना।

0: Today I'm going to share a beautiful quote from the book The Secret. You become what you think about the most, but you also attract what you think about the most. यानी कि आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं, क्योंकि जो आप सोचते हैं उसे ही आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. So watch what you think.
1: आप सुन रहे हैं मिडिल टालिसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो. सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग.

0: एमएससी रेडियो के स्टूडियो से मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी।
1: आई एम योर होस्ट अनिरुद्ध। कीप लिसनिंग टू योर ओन शुद्ध देसी रेडियो।

0: I'm going to share a beautiful quote from the book The Secret. You become what you think about the most, but you also attract what you think about the most. यानी कि आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं, क्योंकि जो आप सोचते हैं उसे ही आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. So watch what you think.
1: हिंदुस्तानी आदमी कहीं भी रहे, दो चीजें कभी नहीं भूल सकते, एक है माँ और दूसरा सिनेमा. माँ के आशीर्वाद से अब सिनेमा आ गया है नैशविल के और भी नजदीक. मिडिल टेनेसी का ऑनलाइन रेडियो शुद्ध

0: अपने आप सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो, सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।
1: सो फ्रेंड्स, हाउ आर यू लाइकिंग दिस प्रोग्राम, हमें बताते रहिए। प्लीज पोस्ट ऑन आवर फेसबुक पेज या फिर हमें इनबॉक्स कीजिए आपके विचार, आपके लाइकिंग, एंड डू लेट अस नो हाउ वी डूइंग सो दैट वी कैन ऑलवेज make changes to adapt to your liking.

0: सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप योर स्माइल।
1: रेडियो इतना शुद्ध जैसे बारिश की पहली बौछार, जैसे माँ के हाथ का अचार, जैसे नन्हे बच्चे की किलकारी, जैसे मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू।

बोला लाउड बोली नेचर बोला दर्शाते हैं, बॉर्डर पे रक्षा करके खेती सबको खाना खिलाते हैं, के लाउड बोली नेचर बोला दर्शाते हैं, बॉर्डर पे रक्षा करके खेती सबको खाना खिलाते हैं। हम हरियाणा से हैं जनाब, हम अपने ब्लड ग्रुप में लेजेंड लिखवाते हैं।

भी रहे हैं। दो चीजें कभी नहीं भूल सकते, एक है माँ और दूसरा सिनेमा। माँ के आशीर्वाद से अब सिनेमा आ गया है नैशविल के और भी नजदीक। मिडिल टेनेसी का ऑनलाइन रेडियो शुद्ध

0: हम लेके आते हैं आपके लिए शुद्ध देसी रेडियो पे एवरी सैटरडे एक्शन पैक्ड शोज, और वीकडेज में हम आपके साथ होते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग रश आवर्स में एक बेस्ट फ्रेंड की तरह।
1: तेरा पीछा ना ना छोड़ूंगा सोनिए, भेज दे चाहे।
2: रफ्तार सवाल यह है कि जो चीज जैसी है उसे वैसे ही पेश क्यों ना किया जाए। मैं तो बस अपनी कहानियों को एक आईना समझता हूं जिसमें समाज अपने आप को देख सके।

0: दिया।
1: किस तरह के अल्फाज हमें सड़कों पर सुनाई नहीं पड़ते। मंटो एक इंसान है, मंटो एक इंसान है, मंटो एक इंसान है, मंटो एक इंसान है। मुझ पर इल्जाम है, मुझ पर इल्जाम है, मुझ पर इल्जाम है। मंटो एक इंसान है।
0: रात में ये बांटते हैं, बांट के ये काटते हैं, कटने वाले खाट पे हैं, इनकी मौज रात में है। लाल बत्ती वाली गाड़ी ग्लास इनके हाथ में है। राजनीति

0: बजाएगा।
1: मैं उस सोसाइटी की चोली क्या उतारूंगा जो पहले से नंगी है। उसे कपड़े पहनाना मेरा काम नहीं है। मैं काली तख्ती पर सफेद चौक इस्तेमाल करता हूं ताकि काली तख्ती और नुमाया हो जाए। मंटो एक इंसान।
0: मैंने घंटों पढ़ा है तुमको मंटो, तुम्हारे जैसा बनू करे मेरा मन तो। इन बंदों को सच नहीं दिखता, 70 साल आजादी के सच आज भी नहीं बिकता।
1: अगर आप मेरी कहानी को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि इस जमाना ही नाकाबिले बर्दाश्त है।

0: You are tuned into Shuddh Desi Radio, USA's number one Bollywood radio station. Desh se dur, par dil ke kareeb.
1: Hum saudagar hain, jani. Nashville mein ek naya online radio shuru hua hai. Shuddh Desi Radio. मेरिल टेनेसी के इस ऑनलाइन रेडियो को सुनते रहिए और मेरी तरह आप भी अपने पसंदीदा हिंदी गानों का मजा लीजिए. समझ गए?

0: फ्रॉम द स्टूडियोज ऑफ शुद्ध देसी रेडियो हम आपके लिए लेके आए हैं फ्रेश न्यू एपिसोड्स ऑफ चक्का जाम।
1: चक्का जाम हम आपके लिए लेके आते हैं वीकडेज इवनिंग आवर्स 4 to 7 PM। तो सुनते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अपने दोस्तों को भी बताते रहिए अबाउट शुद्ध देसी रेडियो।
2: यू विल अट्रैक्ट एवरीथिंग दैट यू रिक्वायर। इफ इट इज मनी यू नीड, यू विल अट्रैक्ट इट। इफ इट इज पीपल यू नीड, यू विल अट्रैक्ट इट। You have got to pay attention to what you are attracted to, because as you hold images of what you want, you are going to be attracted to things and they are going to be attracted to you. But it literally moves into physical reality.

सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो, सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।

आप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, महकना और महकाना तो काम है खुशबू का। खुशबू नहीं मोहताज होती कद्रदानों की। आज का सुविचार, एक मूर्ख व्यक्ति बार बार एक ही गलती करता है, एक ही मिस्टेक करता है और उससे कभी नहीं सीखता। एक कम बुद्धिमान, एक लेस इंटेलिजेंट इंसान वो है जो अपनी गलतियों से सीखता है और उन्हें दोबारा रिपीट नहीं करता है। मगर एक असल में समझदार और बुद्धिमान इंसान वो है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है। अपनी गलतियों से तो सीखता ही है, दूसरों की गलतियों से भी सीखता है और रिपीट नहीं करता अपनी सेम मिस्टेक्स।

0: लाइक एंड फॉलो अवर एफपी पेज शुद्ध देसी रेडियो एंड ड्रॉप कमेंट्स एंड फीडबैक।
1: दो चीजें कभी नहीं भूलता, एक है माँ और दूसरा सिनेमा। माँ के आशीर्वाद से अब हिंदी गाने सुनना हो गया है और भी आसान। शुद्ध देसी रेडियो का iOS का ऐप डाउनलोड करो और गाने सुनना शुरू कर दो।
2: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11।

कदर तेरी बातें मेरे जहन में घूमती हैं, इस कदर तेरी बातें मेरी जहन में घूमती हैं, जैसे तेरी बातों का रेडियो सुन रही हूँ। जी हाँ, आवाज की दुनिया के चाहने वालों, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी।

0: दोस्तों, आप हैं हमारे साथ हमारे रश आवर प्रोग्राम में ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो। और मुझे उम्मीद है कि आपने हमारा ऐप iOS का ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ ऐप स्टोर में जाएं और टाइप करें SHUDDH DESI RADIO और वहाँ पे जाके आप हमारा शुद्ध देसी रेडियो का iOS का ऐप डाउनलोड कीजिए और यू विल एक्सपीरियंस अ डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूज़िक एंड यू विल हैव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू रेट द ऐप।
1: यू विल अट्रैक्ट एवरीथिंग दैट यू रिक्वायर। इफ इट इज़ मनी यू नीड, यू विल अट्रैक्ट इट। If it is people you need, you will attract it. You have got to pay attention to what you are attracted to. Because as you hold images of what you want, you are going to be attracted to things and they are going to be attracted to you. But it literally moves into physical reality with and through you. And it does that by law, by the law of attraction.

0: आप सुन रहे हैं नैशविल का वन एंड ओनली बॉलीवुड रेडियो स्टेशन, जहां पे हम लाते हैं आपके लिए बहुत सारी मज़ेदार बातें, लोकल इवेंट्स के बारे में बातें करते हैं, आपको आपकी फरमाइश के गाने सुनाते हैं, अपनी पसंद के प्रोग्राम सुनाते हैं और कुछ नए टॉपिक्स, कुछ ना कुछ आपके लिए नया ढूंढ के लाते हैं. ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो, ओनली ऑन योर ओन सिटी.
1: माँ के हाथ का खाना और बॉलीवुड का गाना. खाना तो हम आपके लिए नहीं लाए हैं, लेकिन गाना जरूर लाए हैं. ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो.

सुना आपने? आप सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।

0: अच्छा है, देश से दूर हूँ तो क्या देसी गाना भी सुनने को नहीं मिलेगा। अरे पक गया था अंग्रेजी पक पक सुन के, अब मिला है दिल को सुकून, क्योंकि आ गया है शुद्ध देसी रेडियो। अच्छा है, सुनते रहिए शुद्ध देसी रेडियो।
1: सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। दवा जेब में नहीं जाके शरीर में जाए तो असर करती है, वैसे ही अच्छे विचार मोबाइल में ना जाके अगर आपके जीवन में आपकी लाइफस्टाइल में उतरें तो ही उनका असर होता है।

आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो द ओनली बॉलीवुड रेडियो स्टेशन इन साउथ ईस्ट. लाइक एंड फॉलो आवर फेसबुक पेज शुद्ध देसी रेडियो एंड ड्रॉप कमेंट्स एंड फीडबैक देयर. ऑल्सो डाउनलोड आवर iOS ऐप और लॉग ऑन टू www.shuddesiradio.com फॉर नॉन स्टॉप म्यूजिक फन.

0: हेलो नैसल, अब आप लेटेस्ट हिंदी फिल्मों के गाने और आसानी से सुन सकते हैं, क्योंकि अब आगे आए मिडिल टेनेसी का अपना ऑनलाइन रेडियो, शुद्ध देसी रेडियो। और हाँ, हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करते रहिए।
1: आओ, शुद्ध देसी रेडियो, द नंबर वन ऑनलाइन इंडियन रेडियो इन USA, which not only plays Bollywood songs, but also very popular for its regional and local flavors. जी हाँ दोस्तों, अगर आपको सुनना है कुछ regional songs, तो आप सुन सकते हैं only on शुद्ध देसी
2: रेडियो। वक्त हो चला है आज के सुविचार का, जो कि लाई हूँ मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी। बदलाव ही प्रकृति का नियम है। चरखे पे घूमती मिट्टी को देखकर शायद हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि कुछ समय के बाद इससे क्या निकलने वाला है। हो सकता है कि कोई घड़ा निकले, या ये भी हो सकता है कि कोई फूलदान निकले। आम सी दिखने वाली किसी भी चीज़ की कीमत हम उस समय समझ पाते हैं जब वो अपने पुराने रूप को छोड़कर एक नए खूबसूरत अवतार के साथ हमारे सामने आ जाती है। तो ऐसी ही प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातों को सुनने के लिए सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।

गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। भाई सुबह सुबह आप सबको इतना लंबा ग्रीट करने का तो हक बनता ही है, और स्पेशली जब आप ट्यून्ड इन टू हैं शुद्ध देसी रेडियो पे।

0: सुना आपने, आप सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।
1: आज का सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। कुएं में उतरने वाली बाल्टी यदि झुकती है तो भर के बाहर आती है। जीवन का भी यही गणित, यही लेखा जोखा है कि जो झुकता है वही हासिल करता है। दादागिरी तो हम मरने के बाद भी करेंगे, जब लोग पैदल चलेंगे और हम कंधों।

चला है आज के सुविचार का, जो कि लाई हूँ मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी। बदलाव ही प्रकृति का नियम है। चरखे पे घूमती मिट्टी को देखकर शायद हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि कुछ समय के बाद इससे क्या निकलने वाला है। हो सकता है कि कोई घड़ा निकले, या ये भी हो सकता है कि कोई फूलदान निकले। आम सी दिखने वाली किसी भी चीज की कीमत हम उस समय समझ पाते हैं जब वो अपने पुराने रूप को छोड़कर एक नए खूबसूरत अवतार के साथ हमारे सामने आ जाती है। तो ऐसी ही प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातों को सुनने के लिए सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।

0: सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।
1: योर बिजनेस एंड इवेंट्स विद शुद्ध देसी रेडियो। इट इज सिंपल, इट इज फास्ट एंड इट वर्क्स। सिंपली राइट टू अस एट info@shuddhdesireadio.com। इट इज info@shuddhdesireadio.com एंड वी विल गेट इन टच।
2: विचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। यदि किसी इंसान की कोई भी बात आपको बुरी लगे तो उसे दो तरह से सोच के देखिए। यदि वो इंसान ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी ज़िंदगी में, तो उस बात को भूल जाइए। और अगर वो बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो उस व्यक्ति को, उस इंसान को भूल जाइए।

0: फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारा मॉर्निंग शो बम्पर टू बम्पर और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी
1: और मैं हूं आपका होस्ट अनिरुद्ध। सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।

0: छुट्टी का दिन हो,
1: हाथ में चाय का कप हो,
0: साथ हो आपके फेवरेट शुद्ध देसी रेडियो का,
1: तो इससे बेहतर दिन की शुरुआत और क्या होगी।
0: तो सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।
2: दोस्तों, ये है एक नया महीना, नया हफ्ता और हफ्ते का एक नया दिन। और इस नए दिन में मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नया सुविचार। कहीं पढ़ा था मैंने कि टू मच ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड। हमेशा अगर आप आराम के चक्कर में रहेंगे तो आप आलसी हो जाएंगे, अगर हमेशा परफेक्शन के चक्कर में रहेंगे तो बहुत गुस्सैल बन जाएंगे, और अगर हमेशा अमीर बनने के, पैसे कमाने के चक्कर में रहेंगे तो बहुत लालची, बहुत ग्रीडी बन जाएंगे। तो टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ नॉट गुड।

0: शाम का समय और ट्रैफिक की अहकार से परेशान नहीं होने का चक्का जाम में हम सुनाएंगे आपको धमाकेदार बॉलीवुड के गाने फ्रॉम 5 to 7 PM सेंट्रल टाइम जोन पर। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध
1: देसी का नंबर 1 ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए।

0: You guys are tuned into our rush hour program Chakka Jam. मैं हूँ आपकी host and दोस्त शालिनी. So keep on listening and keep on humming with us only on Shuddh Desi Radio.
1: दोस्तों, आप अपनी फरमाइश के गाने हमें भेजते रहिए. आप में से कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कुछ बहुत ही बढ़िया गानों की, जिन्हें कि हम लेके आ रहे हैं अपने सैटरडे के प्रोग्राम में. तो प्लीज कीप ऑन सेंडिंग योर रिक्वेस्ट एंड देन वी विल डेफिनेटली प्ले देम फॉर यू.

0: लेग पीस नहीं है?
1: चीपड़ा।
2: आइए सब लोग कंट्री में आ जाइए। चलो चलो चलो चलो। So let's the संगीत begin। इस म्यूजिकल नाइट में खाली सॉन्ग नहीं होंगे, डांसिंग भी होगी और होगा कंपटीशन। अब ब्राइड की टीम जीतेगी या दूल्हे की, ये तो तभी पता चलेगा जब दुल्हन और दूल्हे के रिश्तेदार यहाँ पे आके डांस करेंगे। अंकित जी आइए ना, आपके शक्ल देखे लग रहा है बहुत जबरदस्त डांस करते होंगे।

0: शुद्ध देसी रेडियो,
1: इतना शुद्ध जैसे माँ के हाथ का खाना,
0: जैसे पहले बारिश की सोंधी खुशबू,
1: जैसे नन्हे बच्चे की खिलकारी,
0: शुद्धता से भरपूर आपका अपना।
1: नहीं नहीं दोस्तों, ये कोई घी का एड नहीं है, ये है आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।
2: You are tuned into Shuddh Desi Radio, USA's number one Bollywood radio station. Desh se dur, par dil ke kareeb. You are listening to America's number one Bollywood radio station, Shuddh Desi Radio. Desh se dur, par dil ke kareeb.

0: दोस्तों डे बाय डे हमारे लिसनर्स के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं. वी आर गेटिंग मोर एंड मोर लव एंड सपोर्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू.
1: तो दोस्तों ऐसे ही आप अपना आपका शुद्ध देसी रेडियो सुनते रहिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी बताइए, उनके साथ भी शेयर कीजिए.

0: Today I'm going to share a beautiful quote from the book The Secret. You become what you think about the most, but you also attract what you think about the most. यानी कि आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं, क्योंकि जो आप सोचते हैं उसे ही आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. So watch what you think.
1: आप सुन रहे हैं मिडिल टॉलेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो. सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग.

0: You guys are tuned in to our Rush Hour program, Chakka Jam. Keep on listening, keep on humming with us only on Shuddh Desi Radio, आपका अपना रेडियो.
1: और अब वक्त हो चला है आज के सुविचार का, जो कि लाई हूँ मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी. बदलाव ही प्रकृति का नियम है. चरखे पे घूमती मिट्टी को देखकर शायद हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि कुछ समय के बाद इससे क्या निकलने वाला है. हो सकता है कि कोई घड़ा निकले, या ये भी हो सकता है कि कोई फूलदान निकले. आम सी दिखने वाली किसी भी चीज़ की कीमत हम उस समय समझ पाते हैं जब वो अपने पुराने रूप को छोड़कर एक नए खूबसूरत अवतार के साथ हमारे सामने आ जाती है. तो ऐसी ही प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातों को सुनने के लिए सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो.

0: अरे भाई, ये खासी नहीं, एक फिल्मी अंदाज था। और ऐसी ही सुपरहिट अंदाज के साथ हम लाएंगे बेस्ट बॉलीवुड म्यूजिक आप सबके लिए। तो सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो, द ओनली बॉलीवुड रेडियो स्टेशन।
1: वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, महकना और महकाना तो काम है खुशबू का। खुशबू नहीं मोहताज होती कद्रदानों की।

0: हम सौदागर हैं, यानी नैशविल में एक नया ऑनलाइन रेडियो शुरू हुआ है, शुद्ध देसी रेडियो। मेरिल टेनेसी के इस ऑनलाइन रेडियो को सुनते रहिए और मेरी तरह आप भी अपने पसंदीदा हिंदी गानों का मजा लीजिए। समझ गए यानी?
1: हेलो नैशविल, अब आप लेटेस्ट हिंदी फिल्मों के गाने और आसानी से सुन सकते हैं, क्योंकि अब आगे आया मिडिल टेनेसी का अपना ऑनलाइन रेडियो, शुद्ध देसी रेडियो। और हाँ, हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करते रहिए।

0: सामने वाले ने किसी ने कोई गलती कर दी तो उसको माफ़ करना, उसको फॉरगिव करना, उसको क्षमा कर देना, वो बात को भूल जाना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है ना। अगर आपके साथ भी ये बात सच है कि आप किसी ने आपके लिए कोई गलत काम कर दिया है और आप ऐसा उसके बारे में सोच रहे हैं, तो अगर आप एक छोटी सी बात ध्यान में रखें कि सामने वाले ने ये गलती जानबूझ के नहीं करी है, दैट वॉज़न्ट दैट पर्सन्स इंटेंट टू डू दैट मिस्टेक, अगर आप ये बात अपने ध्यान में रखेंगे तो शायद आपको अगले इंसान को माफ़ करना, क्षमा करना और या फिर इस बात को भूल जाना थोड़ा सा, ज़रा सा आसान हो सकता है। तो थोड़ी सी एक छोटी सी बात है जिसको आप अगर ध्यान में रखें तो थोड़ी सी लाइफ और आसान हो जाएगी। और ऐसी ही छोटी छोटी सी और अच्छी बातों को, सुविचारों को सुनने के लिए, जानने के लिए सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।
1: खिदमत में मैं अपनी चंद गजलें पेश करने की इजाज़त चाहती हूँ। इजाज़त है।

0: सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।
1: वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, महकना और महकाना तो काम है खुशबू का। खुशबू नहीं मोहताज होती कद्रदानों की।

कौन बोला मुझसे ना हो पाएगा, कौन बोला

0: तो दोस्तों आप I-65 पे हो या I-40 पे हो या फिर I-440 हो या फिर I-24 हो या फिर कोई सरफेस रोड हो, आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे शुद्ध देसी रेडियो के जरिए।
1: हिंदुस्तानी आदमी कहीं भी रहे दो चीजें कभी नहीं बोल सकते, एक है माँ और दूसरा सिनेमा। माँ के आशीर्वाद से अब सिनेमा आ गया है नैशविल के और भी नजदीक। मिडिल टेनेसी का ऑनलाइन रेडियो शुद्ध

रेडियो इतना शुद्ध जैसे बारिश की पहली बौछार, जैसे माँ के हाथ का अचार, जैसे नन्हे बच्चे की किलकारी, जैसे मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू।

0: देश से दूर हूँ तो क्या, देसी गाना भी सुनने को नहीं मिलेगा। अरे पक गया था अंग्रेजी पक पक सुन के, अब मिला है दिल को सुकून, क्योंकि आ गया है शुद्ध देसी रेडियो। अच्छा है, सुनते रहिए शुद्ध देसी रेडियो।
1: You are tuned into शुद्ध देसी रेडियो, USA's number one Bollywood radio station। देश से दूर पर दिल के करीब।

सौदागर है जानी। नैशविल में एक नया ऑनलाइन रेडियो शुरू हुआ है, शुद्ध देसी रेडियो। मेरिल टेनेसी के इस ऑनलाइन रेडियो को सुनते रहिए और मेरी तरह आप भी अपने पसंदीदा हिंदी गानों का मजा लीजिए। समझ गए जानी।

0: नैशविल, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे शुद्ध देसी रेडियो में। और हम एक बार फिर से हर सैटरडे की तरह लेके आए हैं कुछ रंगारंग, कुछ मजेदार प्रोग्राम जस्ट फॉर यू। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी, और मेरे साथ हैं, अरे अनिरुद्ध, ये तुम्हारा डायलॉग है, बोलो।
1: ना सुख है ना दुख है, ना दीन है ना दुनिया, ना इंसान ना भगवान, सिर्फ मैं हूँ, मैं हूँ, मैं और सिर्फ मैं।
0: जय हो, जय हो, अनिरुद्ध बाबा की जय हो। अचानक जनाब फिलोसफिकल हो गए हैं, प्रवचन सुन के आ रहे हैं क्या?
1: अरे नहीं नहीं बाबा, मैं मूवी का डायलॉग बोल रहा था।
0: डायलॉग?
1: ये मूवी का डायलॉग जिस मूवी का है उसका नाम जानते हो आप?
0: नहीं, क्या है?
1: रुको रुको, लेट अवर लिसनर्स आल्सो गेस इट विद अस।
0: ओके, so are we gonna tell the movie's name after this song?
1: After the song, yes.
0: Okay, let's hear it. Gata.

0: कहता रहे मेरा दिल वाह। चलो निरुद्ध, अब बताओ इस मूवी का नाम।
1: अरे यार, मूवी थी गाइड। और दोस्तों, आपको पता है ये मूवी आर के नारायण के उपन्यास द गाइड पर आधारित थी। इसका यूएस में इंग्लिश वर्जन भी बना था। इस नावल और फिल्म का अंत थोड़ा अलग था। आर के नारायण को ये मूवी बिल्कुल पसंद नहीं थी। और हाउ अ फेमस नावल बिकम एन इनफेमस फिल्म, लाइफ मैगजीन पब्लिकेशन ने इस हेडलाइन के अंडर आर्टिकल्स पब्लिश किए थे।
0: वाओ। लेकिन दोस्तों, ये गाइड मूवी इज ऑल टाइम हिट एंड ऑल टाइम फेवरेट मूवी। और इस मूवी के गाने तो एवरग्रीन है,
1: बहुत ही बेहतरीन गाने हैं इसके।
0: तो ऐसे ही नवकेतन फिल्म्स की एक और फिल्म बनी थी, तेरे मेरे सपने। एजे क्रोनिन के नॉवेल द सिटाडेल पे ये फिल्म बनी थी। हेमा मालिनी उस समय फिल्म

0: दोस्तों, हमारे सेगमेंट का नाम है पुस्तक से सिनेमा तक, और हमने अब तक दो नॉवेल्स पर बेस फिल्मों की बात करी। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम इस कार्यक्रम में कौन से गाने लेके आए हैं। मजेदार, लज्जेदार, स्वाद स्वाद में लिज्जत पापड़, लिज्जत पापड़। सॉरी, आई मीन गाने।
1: लिज्जत पापड़, थैंक गॉड। मुझे लगा आप पापड़ का एड दे रहे हैं और हमारे गाने के बारे में आप कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं। एंड यू नो व्हाट, आई वाज जस्ट इमेजिनिंग ईस्टर बनी ईटिंग लिज्जत पापड़।
0: दैट वुड बी फनी।
1: तो दोस्तों, हम यहाँ पे मजे कर रहे हैं और आपको पुस्तक से सिनेमा एपिसोड में गाने सुना रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ गेस करते रहिए, कभी मूवी का नाम तो कभी नॉवेल्स का नाम।
0: बॉलीवुड सॉन्ग्स लाइब्रेरी के कलेक्शन में हम बढ़ाते हैं अपनी गाड़ी और आगे। लाइब्रेरी से मुझे याद आया, आपने कभी येल यूनिवर्सिटी या फिर सिएटल की सेंट्रल लाइब्रेरी की पिक्चर्स देखी है? नहीं देखी है तो इंटरनेट पे

0: जाके देखिए।
1: वेल वेल वेल, लेट्स गेट बैक ऑन ट्रैक। और मुझे समझ नहीं आ रहा है चुन्नी बाबू कि आज का दिन दी से दीवार, द से दिया, द से दर्द, द से दिल, द से दौलत, द से दस्तूर, द से दोहा, द से।
0: ओके, हम सुनते हैं अगला गाना और तब तक हम जानते हैं यहाँ इनकी गाड़ी द पे क्यों अटकी हुई।

0: अब हमें समझ में आया, आप हमें द की कहानी सुनाकर देवदास के बारे में बता रही थी।
1: हाँ, और क्या आपको मालूम है कि संजय लीला भंसाली दो सुपरस्टार्स को इस सॉन्ग में एक साथ लेके आए थे और वो ये चाहते थे कि ये गाना एकदम परफेक्ट हो। एक हफ्ते में ये सॉन्ग तैयार किया गया था और जीनो ऐश्वर्या राय का कान इतने भारी झुमकों की वजह से खून में एकदम लथपथ हो गया था, लेकिन ये बात उन्होंने शूटिंग खत्म होने के बाद ही बताई।
0: क्या बात कर रहे हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। 1917 की नावल देवदास पर यह फिल्म बनी थी जो शरतचंद चट्टोपाध्याय ने नावल लिखा था। जब अब हम कुछ गाने सुनेंगे उन फिल्मों के जो एक ही ऑथर के नावल्स पर बनी है, तो ऑथर का नाम आप गेस कीजिए और मूवीज और गानों के फैक्ट्स के बारे में हम आपको बताते रहेंगे।
1: हाँ, तो क्या हम फिर से कुछ क्विज कर रहे हैं कि हमारे लिसनर्स के साथ?
0: नो रे।

0: इज वेल, जहां पना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो।
1: वाह, थ्री इडियट मूवी का ये जो डायलॉग है बहुत ही फेमस है। एंड डू यू नो, आमिर खान इस मूवी में बिल्कुल भी सीधे खड़े नहीं हुए, हमेशा हिलते डुलते रहे। एंड ही कंक्लूडेड आफ्टर ऑब्जर्विंग हिज नेफ्यू दैट देयर जनरेशन नेवर स्टैंड स्टिल। एंड हिज कैरेक्टर इन दिस मूवी इज इंस्पायर्ड फ्रॉम सोनम वांगचुक, एन इंजीनियर फ्रॉम ले।
0: तो इस फिल्म का सीक्वल 2020 में आने का जानकारों का कहना है, यह फिल्म इंस्पायर्ड है एक बुक जिसका नाम है 5 पॉइंट समवन। आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो प्रोग्राम का नाम है पुस्तक से सिनेमा तक, और मैं हूँ अनिरुद्ध,
1: और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी। और जो ये अगला गाना हम आपके लिए लेके आए हैं वो उस मूवी से है जो कि एक ऑथर की कहानी पर आधारित है। फिल्म और एक्चुअल स्टोरी में थोड़ा सा डिफरेंस है, ऑथर के पिता शादी के लिए नहीं माने लेकिन फिल्म में हैप्पी एंडिंग दिखाई।

0: अभी हमने जो गाना सुना वो मूवी के जो लेखक है उनके और भी कई सारे नॉवेल्स पर फिल्म बनी है। उन नॉवेल्स और उन फिल्म के बारे में हम लोग बात करेंगे फिर कभी। लेकिन क्या आप ये ऑथर का नाम गेस कर सकते हो?
1: जी हाँ, चेतन भगत। लोगों का कहना है कि चेतन भगत फेमस हुए थ्री इडियट मूवीज के बाद, लेकिन चेतन भगत का मानना है कि थ्री इडियट मूवीज से उनको वो रिकॉग्निशन नहीं मिला जो एक्चुअली उनको मिलना चाहिए था।
0: तो चेतन भगत का नया नावल 2018 के मई में, यानी कि अगले महीने में आ सकता है। चेतन भगत की नावल
1: रिवोल्यूशन 2020 पे भी हो सकता है कि कोई फिल्म बन जाए।
0: यस यस यस।
1: टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन माय डियर।
0: अरे अरे अरे, चेतन भगत से सीधे एकदम शेक्सपियर की तरफ।
1: बिल्कुल।
0: चलो ठीक है, मेरे पास भी एक है।
1: हाँ।
0: I am one who loved not wisely but too well. कौन से प्ले का डायलॉग है ये, बता सकते हो आप?
1: लेट मी थिंक, कोई इंग्लिश प्ले लग रहा है।
0: बिल्कुल सही गैस है।
1: अच्छा, लेट मी गैस, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर बट लुक्स लाइक इट्स फ्रॉम ओथेलो।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या एक चीज ऐसी है जिसको आप सही तरीके से गैस ना कर पाओ?
1: मेरे पास वो नवनीत का 2020 वाला गाइड है ना।
0: अच्छा। तो उसमें से सीक्रेट,
1: दैट्स माय सीक्रेट। तो एक्चुअली इस प्ले के ऊपर हिंदी में एक मूवी बनी है और उसका एक डायलॉग है।
0: ओके,
1: सुनिए। चांद जब आधा हो जावे है ना, तो भी चांद ही कहलावे है।
0: आहा, क्या बात है, ये भी नवनी 21 से लगता है।
1: तो आप सुनिए ये गाना और गेस करिए इस मूवी का नाम।

0: है विशाल।
1: अरे कौन विशाल, हम लोग अभी राइट नाउ वी आर ऑन एयर, क्या बात कर रहे हो?
0: अरे यार मैं उस विशाल की बात कर रहा हूँ, विशाल भारद्वाज जो बॉलीवुड में फिल्म डायरेक्ट करते हैं।
1: हाँ अच्छा।
0: तो विशाल इज विलियम शेक्सपियर के बड़े ही फैन है। उन्होंने शेक्सपियर के 3 ट्रेजेडीज को इंडियन सिनेमा के पर्दे पर उतारा था।
1: वाओ।
0: तो ओथेलो जिसका गाना हमने अभी सुना उसका मूवी था ओमकारा।
1: अच्छा मुझे लग रहा है ना मेरा नवनीत गाइड कहीं चोरी हो गया अभी।
0: क्या बात कर रहे हो यार।
1: अच्छा अभी आप ये सुनो, ये आपको नवनीत में नहीं मिलेगा। गिलोरी खाया करो गुलफाम, जुबान काबू में रहती है।
0: क्या बात है, लाजवाब।
1: पंकज कपूर ने मकबूल मूवी में अपने ही अंदाज में ये डायलॉग बोला है और वाह वाह क्या बोला है, गिलोरी खाया करो। मकबूल शेक्सपियर के किस नावल पे बनी थी, गेस इट। और अब नावल का नाम गेस करिए और ये गाना सुनिए।

0: दोस्तों, इस गाने के पहले आपसे सवाल किया था हमने कि ये गाना किस मूवी पे, नहीं ये सवाल नहीं था, ये सवाल था कि ये मूवी किस नॉवल के ऊपर बेस्ड है। तो हमें बहुत सारे लोगों ने जवाब दिए, लेकिन उन जवाब देने वालों में जो सबसे पहला नाम है वो है
1: शालिनी, और उनको शुद्ध देसी रेडियो की तरफ से हम दे रहे हैं एक बड़ा सा गिफ्ट हैम्पर।
0: नहीं दोस्तों, दिस इज ही इज जस्ट पुलिंग माय लेग, ऐसा कुछ नहीं, हमने कोई कॉन्टेस्ट नहीं किया था। हम कॉन्टेस्ट जरूर लेके आएंगे फिर कभी, लेकिन अभी तो हम विल गेट बैक टू द ट्रैक।
1: थोड़ा प्रोग्राम को रंगीन बनाने के लिए थोड़ा ऐसे कुछ करने पड़ते हैं, राइट?
0: यस यस यस। तो दोस्तों, सवाल ये था और उसका जवाब ये है कि आपको पता ही है, लेकिन हम फिर से बता देते हैं कि ये नॉवल था शेक्सपियर के ट्रेजेडी नॉवल मैकबेथ के ऊपर ये मूवी बनी थी मकबूल, जिसका हमने अभी आपको गाना सुनाया।
1: तो एक और ऐसी फेमस प्ले पर विशाल ने, मतलब विशाल भारद्वाज ने मूवी बनाई, वो थी हैदर, जो हैमलेट पर बनी थी। हैदर और मकबूल को क्रिटिक्स ने काफ़ी सराहा था।
0: भैया बहुत भारी भारी बातें हो गई बा, अब कौनो और तनी बातें कर लई, हमारा माथा चक्कर घन्नी की तरह हुआ घूम रहा है, का करी कौनो लाइट गाना नहीं का भाई।

0: दिशा में। ये अभी आपने जो गाना सुना वो था नदिया के पार मूवी से, जिसके म्यूजिक कंपोजर थे रविंद्र जैन। तो नदिया के पार मूवी बनी थी कोहबर की शर्त, केशव प्रसाद मिश्र की नावल के ऊपर। उसके ऊपर और एक मूवी बनी थी जिसका नाम था हम आपके है कौन। तो कैसा लगा मेरा ये लाइट गाना आपको?
1: अब कौनो नीको लग रहा बा, नहीं तो हमार सन हुन मार सर झंझनात रहा।
0: ये भाषा कौन सी है यार? इज इट मिक्स ऑफ अवधी
1: यूपी में हर 10 किलोमीटर पे हिंदी का अपभ्रंश हो जाता है। अप टाउन अप कुछ नहीं, ये एक्चुअली आपका ग्रामर का क्लास हम बाद में लेंगे, अभी तो हमें गाड़ी स्टेशन पे पहुंचानी है तो हम आगे बढ़ते हैं।
0: तो अब हम बात कर रहे हैं मूवीज की, तो ऐसे एक याद आ रही है मूवी, उसका नाम था उमराव जान। रेखा को इस मूवी के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था फॉर बेस्ट एक्ट्रेस।
1: और डू यू नो, रेखा जो कि हिंदी ठीक से बोल भी नहीं पाती हैं, उन्होंने इस मूवी के लिए उर्दू सीखी।

0: की मस्ती में जो आपने अभी गाना सुना, ये फिल्म थी उमराव जान, जो लखनऊ की एक कॉर्टिजैन के ऊपर बनी है, और उर्दू नावल उमराव जान अदा के ऊपर इसकी कहानी है उमराव जान की।
1: और दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज उपन्यासों की, नॉवेल्स की, स्टोरीज की, जिनके ऊपर कुछ मूवीज बेस्ड हैं, हमारे आज के प्रोग्राम में पुस्तक से सिनेमा तक। और H1 वीज़ास का प्रोसेस शुरू हो गया है और हर आहट पे लगता है कि कहीं वीज़ा का नोटिफिकेशन

0: तो अभी आपने जिस फिल्म का गाना सुना उसमें मीना कुमारी ने छोटी बहू की भूमिका अदा की थी, और उसको उन्होंने पहले मना कर दिया था, फिर जाके गुरुदत्त साहब ने उनकी 25% फ़ी बढ़ा दी और 45 दिन की क्लियर डेट्स उनसे उनसे मांग ली। उसके बाद जाके मीना कुमारी जी राज़ी हो गई और पूरी फिल्म की शूटिंग की गई थी। उसके बाद में छोटी बहू की फिल्म शूट किए गए थे।
1: छोटी बहू के सीन्स पूरी मूवी होने के बाद
0: में। यस,
1: दैट इज सम इंटरेस्टिंग न्यूज अबाउट दिस मूवी। आयरॉनिकली इस मूवी में मीना कुमारी को दिखाया गया है कि वो कैसे पूरी मूवी में अल्कोहल और शराब पीती है, और 39 इयर्स की उम्र में अल्कोहल की वजह से ही उनकी डेथ भी हो गई थी। मीना कुमारी उस डिकेड की कमाल की अदाकारा थी। साहब बीवी और गुलाम, जिस मूवी का ये गाना आपने आप भी सुना है, वो बिमल मित्रा की बंगाली नॉवल सेम नाम से जो कि थी साहब बीवी और गुलाम, उस नॉवल के ऊपर। अब जो आप अगला गाना सुनने जा रहे हैं वो मराठी नॉवल राव पर बनी मूवी से लिया गया है। उसका एक डायलॉग है कुछ ऐसे, उन्होंने हमसे मोहब्बत ज़रूर की है पर आपसे रिश्ता तोड़ा तो नहीं। राव कहते हैं कि तुम हमारी प्रेरणा हो मस्तानी और काशी हमारी ताकत। अब तो आप समझ ही गए होंगे हम किस मूवी की बात कर रहे हैं।

0: हिंदुस्तानी मूवी से था ये गाना। और क्या आपको है कुछ खाना, तो खाते खाते सुनिए हमारा गाना।
1: अरे ये तो त से तुकबंदी हो गई।
0: सच्ची में तो आज है शनिवार और आप हमें सुन रहे हैं लाइव शुद्ध देसी रेडियो पर। जाइएगा नहीं, हमारे स्टॉक में और काफी सारे घंटे का प्रोग्राम है, एंटरटेनमेंट है आपके लिए, तो सुनते रहिए।
1: नैशविल, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे शुद्ध देसी रेडियो में। और हम एक बार फिर से हर सैटरडे की तरह लेके आए हैं कुछ रंगारंग, कुछ मजेदार प्रोग्राम जस्ट फॉर यू। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी, और मेरे साथ हैं, अरे अनिरुद्ध, ये तुम्हारा डायलॉग है, बोलो।
0: ना सुख है ना दुख है, ना दीन है ना दुनिया, ना इंसान ना भगवान, सिर्फ मैं हूँ, मैं हूँ, मैं और सिर्फ मैं।
1: जय हो, जय हो, अनिरुद्ध बाबा की जय हो। अचानक जनाब फिलोसफिकल हो गए हैं, प्रवचन सुन के आ रहे हैं क्या?
0: अरे नहीं नहीं बाबा, मैं मूवी का डायलॉग बोल रहा था।
1: डायलॉग?
0: ये मूवी का डायलॉग जिस मूवी का है उसका नाम जानते हो आप?
1: नहीं, क्या है?
0: रुको रुको, let our listeners also guess it with us.
1: Okay, so are we gonna tell the movie's name after this song?
0: After the song, yes.
1: Okay, let's hear it. Gata.

0: शुद्ध देसी रेडियो के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है।
1: शुद्ध देसी रेडियो, इतना शुद्ध जैसे माँ के हाथ का खाना,
0: जैसे पहले बारिश की सोंधी खुशबू,
1: जैसे नन्हे बच्चे की किलकारी।
0: शुद्धता से भरपूर आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।
2: अच्छा है, देश से दूर हूँ तो क्या देसी गाना भी सुनने को नहीं मिलेगा? अरे पक गया था अंग्रेजी पक पक सुन के, अब मिला है दिल को सुकून क्योंकि आ गया है शुद्ध देसी रेडियो। अच्छा है, सुनते रहे।

0: follow our Facebook page, Shuddh Desi Radio, and leave us feedback there. Download our free iOS app and log on to www.shuddhdesiradio.com for non-stop music and lots
1: of fun. आज का सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। दवा जेब में नहीं जाके शरीर में जाए तो असर करती है, वैसे ही अच्छे विचार मोबाइल में ना जाके अगर आपके जीवन में आपकी लाइफस्टाइल में उतरें तो ही उनका असर होता है।

सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।

0: your business and events with Shuddh Desi Radio. It is simple, it is fast, and it works. Simply write to us at info@shuddhdesiradio.com. It is info@shuddhdesiradio.com. And we will get in touch with
1: Desi Duru to kya? Desi gana bhi sunne ko nahi milega. अरे पक गया था अंग्रेजी पक पक सुन के, अब मिला है दिल को सुकून क्योंकि आ गया है शुद्ध देसी रेडियो। अच्छा है, सुनते रहिए शुद्ध देसी।

सुविचार। एक मूर्ख व्यक्ति बार बार एक ही गलती करता है, एक ही मिस्टेक करता है और उससे कभी नहीं सीखता। एक कम बुद्धिमान, एक लेस इंटेलिजेंट इंसान वो है जो अपनी गलतियों से सीखता है और उन्हें दोबारा रिपीट नहीं करता है। मगर एक असल में समझदार और बुद्धिमान इंसान वो है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है। अपनी गलतियों से तो सीखता ही है, दूसरों की गलतियों से भी सीखता है और रिपीट नहीं करता अपनी सेम मिस्टेक्स।

0: हमें आपकी बहुत सारी सॉन्ग रिक्वेस्ट मिल रही हैं और हम ज़रूर आपकी फरमाइश पूरी करेंगे और वो भी बहुत जल्दी ही। आप अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट और फीडबैक या कोई भी सजेशन हमारे शुद्ध देसी रेडियो के फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हैं।
1: I'm going to share a beautiful quote from the book The Secret. You become what you think about the most. But you also attract what you think about the most. यानी कि आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं, क्योंकि जो आप सोचते हैं उसे ही आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. So watch what you think.

0: अपने। आप सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो, सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।
1: बेबी मेरी हाय हाय कोली मारे, अखियों से हाय हाय कोली।

0: कल है मंथ एंड और तुम सबको अपना टारगेट पूरा करना है, दो दो अंडे देने हैं।
1: ओके बॉस।
0: अरे सबने तो अपना टारगेट पूरा कर दिया है, तुम्हारा टारगेट कहाँ है?
1: बॉस टारगेट पूरा करने के लिए तो एक अंडा दिया है, वैसे तो मैं

0: are tuned into Shuddh Desi Radio, USA's number one Bollywood radio station. Desh se dur, par dil ke kareeb. You are listening to America's number one Bollywood radio station, Shuddh Desi Radio. Desh se dur, par dil ke kareeb.
1: हिंदुस्तानी आदमी दो चीजें कभी नहीं भूलता. एक है माँ और दूसरा सिनेमा. माँ के आशीर्वाद से अब हिंदी गाने सुनना हो गया है और भी आसान. शुद्ध देसी रेडियो का iOS का ऐप डाउनलोड करो और गाने सुनना शुरू कर दो.

0: रेडियो इतना शुद्ध जैसे बारिश की पहली बौछार, जैसे माँ के हाथ का अचार, जैसे नन्हे बच्चे की किलकारी, जैसे मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू।
1: फोकस गोज एनर्जी फ्लोज एंड वेयर एनर्जी फ्लोज वट एवर यू आर फोकसिंग ऑन ग्रोज। In other words, your life is controlled by what you focus on. That's why you need to focus on where you want to go, not on what you fear. When you next time find yourself in a state of uncertainty, resist your fear, shift your focus toward where you want to go, and your actions will take you in that direction. So, where focus goes, energy flows.

0: guys, are you still listening to us on shuddesiradio.com? Do you guys know that we have an iOS app now? So go to App Store and look for our app. Do search by Shudh Desi Radio. That's S-H-U-D-D-H space Desi. That's D-E-S-I Radio. That's R-A-D-I-O. And you'll find our app. Download it. It's a free app. So there's no way you have to pay anything to listen to our music. So download and tell us how we are doing.
1: आज का सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। कुएं में उतरने वाली बाल्टी यदि झुकती है तो भर के बाहर आती है। जीवन का भी यही गणित, यही लेखा जोखा है कि जो झुकता है वही हासिल करता है। दादागिरी तो हम मरने के बाद भी करेंगे, जब लोग पैदल चलेंगे और हम कंधों।

0: हेलो नैसल, अब आप लेटेस्ट हिंदी फिल्मों के गाने और आसानी से सुन सकते हैं, क्योंकि अब आगे आए मिडिल टेनेसी का अपना ऑनलाइन रेडियो, शुद्ध देसी रेडियो। और हाँ, हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करते रहिए।
1: चाहिए माँ के हाथ का खाना और बॉलीवुड का गाना। खाना तो हम आपके लिए नहीं लाए हैं, लेकिन गाना जरूर लाए हैं, ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो।

0: आज का सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। कुएं में उतरने वाली बाल्टी यदि झुकती है तो दोस्तों ये है एक
1: अच्छा है। देश से दूर हूँ तो क्या देसी गाना भी सुनने को नहीं मिलेगा? अरे पक गया था अंग्रेजी पक पक सुन के, अब मिला है दिल को सुकून क्योंकि आ गया है शुद्ध देसी रेडियो। अच्छा है, सुनते रहिए शुद्ध देसी रेडियो।
2: मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो, सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप।

वक्त हो चला है आज के सुविचार का, जो कि लाई हूँ मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी। बदलाव ही प्रकृति का नियम है। चरखे पे घूमती मिट्टी को देखकर शायद हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि कुछ समय के बाद इससे क्या निकलने वाला है। हो सकता है कि कोई घड़ा निकले, या ये भी हो सकता है कि कोई फूलदान निकले। आम सी दिखने वाली किसी भी चीज़ की कीमत हम उस समय समझ पाते हैं जब वो अपने पुराने रूप को छोड़कर एक नए खूबसूरत अवतार के साथ हमारे सामने आ जाती है। तो ऐसी ही प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातों को सुनने के लिए सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।

0: दोस्तों डे बाय डे हमारे लिसनर्स के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं. वी आर गेटिंग मोर एंड मोर लव एंड सपोर्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू.
1: तो दोस्तों ऐसे ही आप अपना आपका शुद्ध देसी रेडियो सुनते रहिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी बताइए, उनके साथ भी शेयर कीजिए. आज का सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी. यदि किसी इंसान की कोई भी बात आपको बुरी लगे तो उसे दो तरह से सोच के देखिए. यदि वो इंसान ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी ज़िंदगी में, तो उस बात को भूल जाइए. और अगर वो बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो उस व्यक्ति को, उस इंसान को भूल जाइए.

हेलो नैसल, अब आप लेटेस्ट हिंदी फिल्मों के गाने और आसानी से सुन सकते हैं, क्योंकि अब आगे आया मिडिल टेनेसी का अपना ऑनलाइन रेडियो, शुद्ध देसी रेडियो। और हाँ, हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करते रहिए। आओ।

बोले लाउड बोली नेचर बोला दर्शाते हैं, बॉर्डर पे रक्षा करके खेती सबको खाना खिलाते हैं, के लाउड बोली नेचर बोला दर्शाते हैं, बॉर्डर पे रक्षा करके खेती सबको खाना खिलाते हैं। हम हरियाणा से हैं जनाब, हम अपने ब्लड ग्रुप में लेजेंड लिखवाते हैं।

वाले ने किसी ने कोई गलती कर दी तो उसको माफ़ करना, उसको फॉरगिव करना, उसको क्षमा कर देना, वो बात को भूल जाना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है ना। अगर आपके साथ भी ये बात सच है कि आप किसी ने आपके लिए कोई गलत काम कर दिया है और आप ऐसा उसके बारे में सोच रहे हैं, तो अगर आप एक छोटी सी बात ध्यान में रखें कि सामने वाले ने ये गलती जानबूझ के नहीं करी है, दैट वॉजेंट दैट पर्सन्स इंटेंट टू डू दैट मिस्टेक, अगर आप ये बात अपने ध्यान में रखेंगे तो शायद आपको अगले इंसान को माफ़ करना, क्षमा करना और या फिर इस बात को भूल जाना थोड़ा सा, ज़रा सा आसान हो सकता है। तो थोड़ी सी एक छोटी सी बात है जिसको आप अगर ध्यान में रखें तो थोड़ी सी लाइफ और आसान हो जाएगी। और ऐसी ही छोटी छोटी सी और अच्छी बातों को, सुविचारों को सुनने के लिए, जानने के लिए सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।

आदमी कहीं भी रहे, दो चीजें कभी नहीं भूल सकते, एक है माँ और दूसरा सिनेमा। माँ के आशीर्वाद से अब सिनेमा आ गया है नैशविल के और भी नजदीक। मिडिल टेनेसी का ऑनलाइन रेडियो, शुद्ध देसी रेडियो।

0: कल है मंथ एंड और तुम सबको अपना टारगेट पूरा करना है, दो दो अंडे देने हैं।
1: ओके बॉस।
0: अरे सबने तो अपना टारगेट पूरा कर दिया है, तुम्हारा टारगेट कहाँ है?
1: बॉस टारगेट पूरा करने के लिए तो एक अंडा दिया है, वैसे तो मैं मुर्गा।

तो चाहिए माँ के हाथ का खाना और बॉलीवुड का गाना। खाना तो हम आपके लिए नहीं लाए हैं, लेकिन गाना जरूर लाए हैं, ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो।

हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, महकना और महकाना तो काम है खुशबू का। खुशबू नहीं मोहताज होती कद्रदानों की।

दोस्तों, आप हैं हमारे साथ हमारे रश आवर प्रोग्राम में ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो। और मुझे उम्मीद है कि आपने हमारा ऐप iOS का ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ ऐप स्टोर में जाएं और टाइप करें SHUDDH स्पेस DESI स्पेस RADIO और वहाँ पे जाके आप हमारा शुद्ध देसी रेडियो का iOS का ऐप डाउनलोड कीजिए और यू विल एक्सपीरियंस अ डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूज़िक एंड यू विल हैव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू रेट द ऐप।

अब वक्त हो चला है आज के सुविचार का, जो कि लाई हूं मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी। बदलाव ही प्रकृति का नियम है। चरखे पे घूमती मिट्टी को देखकर शायद हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि कुछ समय के बाद इससे क्या निकलने वाला है। हो सकता है कि कोई घड़ा निकले, या ये भी हो सकता है कि कोई फूलदान निकले। आम सी दिखने वाली किसी भी चीज की कीमत हम उस समय समझ पाते हैं जब वो अपने पुराने रूप को छोड़कर एक नए खूबसूरत अवतार के साथ हमारे सामने आ जाती है। तो ऐसी ही प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातों को सुनने के लिए सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।

हो चला है आज के सुविचार का, जो कि लाई हूँ मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी। बदलाव ही प्रकृति का नियम है। चरखे पे घूमती मिट्टी को देखकर शायद हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि कुछ समय के बाद इससे क्या निकलने वाला है। हो सकता है कि कोई घड़ा निकले, या ये भी हो सकता है कि कोई फूलदान निकले। आम सी दिखने वाली किसी भी चीज़ की कीमत हम उस समय समझ पाते हैं जब वो अपने पुराने रूप को छोड़कर एक नए खूबसूरत अवतार के साथ हमारे सामने आ जाती है। तो ऐसी ही प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातों को सुनने के लिए सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।

ऐसी रेडियो इतना शुद्ध जैसे बारिश की पहली बौछार, जैसे माँ के हाथ का अचार, जैसे नन्हे बच्चे की किलकारी, जैसे मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू।

सोच का सुविचार। एक मूर्ख व्यक्ति बार बार एक ही गलती करता है, एक ही मिस्टेक करता है और उससे कभी नहीं सीखता। एक कम बुद्धिमान, एक लेस इंटेलिजेंट इंसान वो है जो अपनी गलतियों से सीखता है और उन्हें दोबारा रिपीट नहीं करता है। मगर एक असल में समझदार और बुद्धिमान इंसान वो है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है, अपनी गलतियों से तो सीखता ही है, दूसरों की गलतियों से भी सीखता है और रिपीट नहीं करता अपनी सेम मिस्टेक्स।

0: advertise your business and events with Shuddh Desi Radio. It is simple, it is fast, and yes, it works. Simply write to us at info@shuddhdesiradio.com and we will get in touch with you.
1: सौदागर हैं, यानी नैशविल में एक नया ऑनलाइन रेडियो शुरू हुआ है, शुद्ध देसी रेडियो। मेरिल टेनेसी के इस ऑनलाइन रेडियो को सुनते रहिए और मेरी तरह भी अपने पसंदीदा हिंदी गानों का मजा लीजिए। समझ गए यानी?

0: सामने वाले ने किसी ने कोई गलती कर दी तो उसको माफ़ करना, उसको फॉरगिव करना, उसको क्षमा कर देना, वो बात को भूल जाना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है ना। अगर आपके साथ भी ये बात सच है कि आप किसी ने आपके लिए कोई गलत काम कर दिया है और आप ऐसा उसके बारे में सोच रहे हैं, तो अगर आप एक छोटी सी बात ध्यान में रखें कि सामने वाले ने ये गलती जानबूझ के नहीं करी है, दैट वॉजेंट दैट पर्सन्स इंटेंट टू डू दैट मिस्टेक, अगर आप ये बात अपने ध्यान में रखेंगे तो शायद आपको अगले इंसान को माफ़ करना, क्षमा करना और या फिर इस बात को भूल जाना थोड़ा सा, ज़रा सा आसान हो सकता है। तो थोड़ी सी एक छोटी सी बात है जिसको आप अगर ध्यान में रखें तो थोड़ी सी लाइफ और आसान हो जाएगी, और ऐसी ही छोटी छोटी सी और अच्छी बातों को, सुविचारों को सुनने के लिए, जानने के लिए सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।
1: शुद्ध देसी रेडियो,
0: इतना शुद्ध जैसे माँ के हाथ का खाना,
1: जैसे पहले बारिश की सोंधी खुशबू,
0: जैसे नन्हे बच्चे की खिलकारी,
1: शुद्धता से भरपूर आपका अपना।
0: नहीं नहीं दोस्तों, ये कोई घी का एड नहीं है, ये है आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।

सुन रहे हैं मिडिल टॉलेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।

दो चीजें कभी नहीं भूलता, एक है माँ और दूसरा सिनेमा। माँ के आशीर्वाद से अब हिंदी गाने सुनना हो गया है और भी आसान। शुद्ध देसी रेडियो का iOS का ऐप डाउनलोड करो और गाने सुनना शुरू कर दो। शुद्ध

0: सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। दवा जेब में नहीं जाके शरीर में जाए तो असर करती है, वैसे ही अच्छे विचार मोबाइल में ना जाके अगर आपके जीवन में आपकी लाइफस्टाइल में उतरें तो ही उनका असर होता है।
1: अच्छा है, देश से दूर हूँ तो क्या देसी गाना भी सुनने को नहीं मिलेगा? अरे पक गया था अंग्रेजी पक पक सुन के, अब मिला है दिल को सुकून क्योंकि आ गया है शुद्ध देसी रेडियो। अच्छा है, सुनते रहिए शुद्ध देसी रेडियो।

0: जट जट लटक मटक लचक मचक लचक मचक चाल चलत जा।
1: ए छोरा गांडा थई।

मिडिलटन इसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन, शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।

going to share a beautiful quote from the book The Secret. You become what you think about the most, but you also attract what you think about the most. यानी कि आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं, क्योंकि जो आप सोचते हैं उसे ही आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. सो वॉच वॉट यू थिंक. देसी को चाहिए माँ के हाथ का खाना और बॉलीवुड का गाना. खाना तो हम आपके लिए नहीं लाए हैं, लेकिन गाना जरूर लाए हैं, ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो.

हेलो नैसल, अब आप लेटेस्ट हिंदी फिल्मों के गाने और आसानी से सुन सकते हैं, क्योंकि अब आगे आया मिडिल टेनेसी का अपना ऑनलाइन रेडियो, शुद्ध देसी रेडियो। और हाँ, हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करते रहिए। आओ

0: हमें आपकी बहुत सारी सॉन्ग रिक्वेस्ट मिल रही हैं और हम ज़रूर आपकी फरमाइश पूरी करेंगे और वो भी बहुत जल्दी ही। आप अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट और फीडबैक या कोई भी सजेशन हमारे शुद्ध देसी रेडियो के फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हैं।
1: आदमी कहीं भी रहे, दो चीजें कभी नहीं बोल सकते, एक है माँ और दूसरा सिनेमा। माँ के आशीर्वाद से अब सिनेमा आ गया है नैशविल के और भी नजदीक। मिडिल टेनेसी का ऑनलाइन रेडियो, शुद्ध देसी रेडियो।

का सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। दवा जेब में नहीं जाके शरीर में जाए तो असर करती है, वैसे ही अच्छे विचार मोबाइल में ना जाके अगर आपके जीवन में आपकी लाइफस्टाइल में उतरें तो ही उनका असर होता है। वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, महकना और महकाना तो काम है खुशबू का। खुशबू नहीं मोहताज होती कद्रदानों की।

का सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। यदि किसी इंसान की कोई भी बात आपको बुरी लगे तो उसे दो तरह से सोच के देखिए। यदि वो इंसान ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी ज़िंदगी में, तो उस बात को भूल जाइए। और अगर वो बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो उस व्यक्ति को, उस इंसान को भूल जाइए।

0: सी रेडियो के स्टूडियो से मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी।
1: आई एम योर होस्ट अनिरुद्ध। कीप लिसनिंग टू योर ओन शुद्ध देसी रेडियो।
2: आपने आप सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।

0: हम सौदागर हैं, यानी नैशविल में एक नया ऑनलाइन रेडियो शुरू हुआ है, शुद्ध देसी रेडियो। मेरिल टेनेसी के इस ऑनलाइन रेडियो को सुनते रहिए और मेरी तरह आप भी अपने पसंदीदा हिंदी गानों का मजा लीजिए। समझ गए यानी?
1: दोस्तों, ये है एक नया महीना, नया हफ्ता और हफ्ते का एक नया दिन, और इस नए दिन में मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नया सुविचार। कहीं पढ़ा था मैंने कि टू मच ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड। हमेशा अगर आप आराम के चक्कर में रहेंगे तो आप आलसी हो जाएंगे, अगर हमेशा परफेक्शन के चक्कर में रहेंगे तो बहुत गुस्सैल बन जाएंगे, और अगर हमेशा अमीर बनने के, पैसे कमाने के चक्कर में रहेंगे तो बहुत लालची, बहुत ग्रीडी बन जाएंगे। तो टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ नॉट गुड।

हेलो नैसल, अब आप लेटेस्ट हिंदी फिल्मों के गाने और आसानी से सुन सकते हैं, क्योंकि अब आगे आया मिडिल टेनेसी का अपना ऑनलाइन रेडियो, शुद्ध देसी रेडियो। और हाँ, हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करते रहिए। आओ

0: हेलो नैसल, अब आप लेटेस्ट हिंदी फिल्मों के गाने और आसानी से सुन सकते हैं, क्योंकि अब आगे आया मिडिल टेनेसी का अपना ऑनलाइन रेडियो, शुद्ध देसी रेडियो। और हाँ, हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करते रहिए।
1: शुद्ध देसी रेडियो के नए ऐप के साथ सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजना अब है और भी आसान। सिंपली ऑल यू हैव टू डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल डाउनलोड द ऐप, वहाँ पे सॉन्ग रिक्वेस्ट का विंडो है, आप वहाँ पे जा सकते हैं, सॉन्ग का नाम लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, किसी को आप डेडिकेट करना चाहते हैं वो सब लिख सकते हैं, एंड एवरी थिंग इज़ ऑन योर फिंगर टिप्स गाइज। सो प्लीज़ डाउनलोड द ऐप एंड सेंड अस।
2: चाहिए माँ के हाथ का खाना और बॉलीवुड का गाना। खाना तो हम आपके लिए नहीं लाए हैं, लेकिन गाना ज़रूर लाए हैं, ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो।

0: फ्रॉम द स्टूडियोज ऑफ शुद्ध देसी रेडियो हम लेके आए हैं आपके लिए ब्रांड न्यू बम्पर टू बम्पर एपिसोड्स.
1: It's on weekday mornings from 7 to 9. So keep on listening and tell your friends. आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो.

0: जैसे दूर हूँ तो क्या देसी गाना भी सुनने को नहीं मिलेगा? अरे पक गया था अंग्रेजी पक पक सुन के, अब मिला है दिल को सुकून, क्योंकि आ गया है शुद्ध देसी रेडियो। अच्छा है, सुनते रहिए शुद्ध देसी रेडियो।
1: सामने वाले ने किसी ने कोई गलती कर दी तो उसको माफ करना, उसको फॉरगिव करना, उसको क्षमा कर देना, वो बात को भूल जाना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है ना। अगर आपके साथ भी ये बात सच है कि आप किसी ने आपके लिए कोई गलत काम कर दिया है और आप ऐसा उसके बारे में सोच रहे हैं, तो अगर आप एक छोटी सी बात ध्यान में रखें कि सामने वाले ने ये गलती जानबूझ के नहीं करी है, दैट वॉजेंट दैट पर्सन्स इंटेंट टू डू दैट मिस्टेक, अगर आप ये बात अपने ध्यान में रखेंगे तो शायद आपको अगले इंसान को माफ़ करना, क्षमा करना और या फिर इस बात को भूल जाना थोड़ा सा ज़रा सा आसान हो सकता है। तो थोड़ी सी एक छोटी सी बात है जिसको आप अगर ध्यान में रखें तो थोड़ी सी लाइफ और आसान हो जाएगी। और ऐसी ही छोटी छोटी सी और अच्छी बातों को, सुविचारों को सुनने के लिए, जानने के लिए सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।

0: का सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। दवा जेब में नहीं जाके शरीर में जाए तो असर करती है, वैसे ही अच्छे विचार मोबाइल में ना जाके अगर आपके जीवन में आपकी लाइफस्टाइल में उतरें तो ही उनका असर होता है।
1: This one coming straight from out of the dancehall.

0: सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप अ स्माइल।
1: आप सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।
2: यू विल अट्रैक्ट एवरीथिंग दैट यू रिक्वायर। इफ इट इज मनी यू नीड, यू विल अट्रैक्ट इट। If it is people you need, you will attract it. You have got to pay attention to what you are attracted to, because as you hold images of what you want, you are going to be attracted to things and they are going to be attracted to you. But it literally moves into physical reality with and through you, and it does that by law, by the law of attraction.

आदमी कहीं भी रहे, दो चीजें कभी नहीं भूल सकते, एक है माँ और दूसरा सिनेमा। माँ के आशीर्वाद से अब सिनेमा आ गया है नैशविल के और भी नजदीक। मिडिल टेनेसी का ऑनलाइन रेडियो, शुद्ध देसी रेडियो।

0: हिंदुस्तानी आदमी कहीं भी रहे, दो चीजें कभी नहीं भूल सकते, एक है माँ और दूसरा सिनेमा। माँ के आशीर्वाद से अब सिनेमा आ गया है नैशविल के और भी नजदीक। मिडिल टेनेसी का ऑनलाइन रेडियो शुद्ध देसी।
1: You are tuned into शुद्ध देसी रेडियो, USA's number one बॉलीवुड रेडियो स्टेशन। देश से दूर पर दिल के करीब।
2: शुद्ध

0: सो फ्रेंड्स, होप यू गाइस आर लाइकिंग आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो. प्लीज डू टेल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली अबाउट दिस शुद्ध देसी रेडियो एंड डू लाइक अस ऑन आवर फेसबुक पेज एंड टेल अस हाउ वी डूइंग शुद्ध देसी रेडियो.
1: बहुत गौर से सुनिए आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ. ये एक अतरंगी भूत की कहानी कभी नहीं सुनेगी आप ऐसे कहानी. नानू के पीछे पड़ी है ये भूत, उसके बिस्तर

सुन रहे हैं मिडिल टालिसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।

आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो द ओनली बॉलीवुड रेडियो स्टेशन इन साउथ ईस्ट. लाइक एंड फॉलो आवर फेसबुक पेज शुद्ध देसी रेडियो एंड ड्रॉप कमेंट्स एंड फीडबैक देयर. ऑल्सो डाउनलोड आवर iOS ऐप और लॉग ऑन टू www.shuddesiradio.com फॉर नॉन स्टॉप म्यूजिक फन.

0: वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, खुशबू नहीं मोहताज होती कद्रदानों की।
1: आप सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज

0: का सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। दवा जेब में नहीं जाके शरीर में जाए तो असर करती है, वैसे ही अच्छे विचार मोबाइल में ना जाके अगर आपके जीवन में आपकी लाइफस्टाइल में उतरें तो ही उनका असर होता है।
1: You are tuned into Shuddh Desi Radio, USA's number one Bollywood radio station. Desh se dur, par dil ke kareeb. You are listening to America's number one Bollywood radio station, Shuddh Desi Radio. Desh se dur, par dil ke kareeb.

0: तो दोस्तों आप आई 65 पे हो या आई 40 पे हो या फिर आई 440 हो या फिर आई 24 हो या फिर कोई सरफेस रोड हो, आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे शुद्ध देसी रेडियो के जरिए।
1: आज का सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। यदि किसी इंसान की कोई भी बात आपको बुरी लगे तो उसे दो तरह से सोच के देखिए। यदि वो इंसान ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी ज़िंदगी में, तो उस बात को भूल जाइए। और अगर वो बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो उस व्यक्ति को, उस इंसान को भूल जाइए।

0: अच्छा है। देश से दूर हूँ तो क्या देसी गाना भी सुनने को नहीं मिलेगा? अरे पक गया था अंग्रेजी पक पक सुन के, अब मिला है दिल को सुकून क्योंकि आ गया है शुद्ध देसी रेडियो। अच्छा है, सुनते रहिए शुद्ध देसी रेडियो।
1: सौदागर है यानी नैशविल में एक नया ऑनलाइन रेडियो शुरू हुआ है, शुद्ध देसी रेडियो। मेरिल टेनेसी के इस ऑनलाइन रेडियो को सुनते रहिए और मेरी तरह आप भी अपने पसंदीदा हिंदी गानों का मजा लीजिए। समझ गए?

0: आज का सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। कुएं में उतरने वाली बाल्टी यदि झुकती है तो भर के बाहर आती है। जीवन का भी यही गणित, यही लेखा जोखा है कि जो झुकता है वही हासिल करता है। दादागिरी तो हम मरने के बाद भी करेंगे जब लोग पैदल चलेंगे और हम कंधों।
1: You guys are tuned into Shuddh Desi Radio, the only Bollywood radio station in Southeast.

0: सौदागर है जानी, नैशविल में एक नया ऑनलाइन रेडियो शुरू हुआ है, शुद्ध देसी रेडियो। मेरिल टेनेसी के इस ऑनलाइन रेडियो को सुनते रहिए और मेरी तरह आप भी अपने पसंदीदा हिंदी गानों का मजा लीजिए। समझ गए यानी?
1: To share a beautiful quote from the book The Secret. You become what you think about the most, but you also attract what you think about the most. यानी कि आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं, क्योंकि जो आप सोचते हैं उसे ही आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. So watch what you think.

0: हिंदुस्तानी आदमी कहीं भी रहे, दो चीजें कभी नहीं भूल सकते, एक है माँ और दूसरा सिनेमा। माँ के आशीर्वाद से अब सिनेमा आ गया है नैशविल के और भी नजदीक। मिडिल टेनेसी का ऑनलाइन रेडियो, शुद्ध देसी रेडियो
1: सौदागर है। यानी नैशविल में एक नया ऑनलाइन रेडियो शुरू हुआ है, शुद्ध देसी रेडियो। मिडिल टेनेसी के इस ऑनलाइन रेडियो को सुनते रहिए और मेरी तरह आप भी अपने पसंदीदा हिंदी गानों का मजा लीजिए। समझ गए?

0: हम लेके आते हैं आपके लिए शुद्ध देसी रेडियो पे एवरी सैटरडे एक्शन पैक्ड शोज, और वीकडेज में हम आपके साथ होते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग रश आवर्स में एक बेस्ट फ्रेंड की तरह।
1: तेरा पीछा ना ना छोड़ूंगा सोनिए, भेज दे चाहे।
2: जी हाँ भाई बहनों, झुमरी तलिया से मुन्नी की रिक्वेस्ट आई है, रफ्ता रफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है।

0: सुन रहे हैं शुद्ध देसी रेडियो, योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन ऑफ बॉलीवुड म्यूजिक।
1: अच्छा है, देश से दूर हूँ तो क्या देसी गाना भी सुनने को नहीं मिलेगा? अरे पक गया था अंग्रेजी पक पक सुन के, अब मिला है दिल को सुकून क्योंकि आ गया है शुद्ध देसी रेडियो। अच्छा है, सुनते रहिए शुद्ध।

वक्त हो चला है आज के सुविचार का, जो कि लाई हूँ मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी। बदलाव ही प्रकृति का नियम है। चरखे पे घूमती मिट्टी को देखकर शायद हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि कुछ समय के बाद इससे क्या निकलने वाला है। हो सकता है कि कोई घड़ा निकले, या ये भी हो सकता है कि कोई फूलदान निकले। आम सी दिखने वाली किसी भी चीज की कीमत हम उस समय समझ पाते हैं जब वो अपने पुराने रूप को छोड़कर एक नए खूबसूरत अवतार के साथ हमारे सामने आ जाती है। तो ऐसी ही प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातों को सुनने के लिए सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।

आप सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।

दो चीजें कभी नहीं भूलता, एक है माँ और दूसरा सिनेमा। माँ के आशीर्वाद से अब हिंदी गाने सुनना हो गया है और भी आसान। शुद्ध देसी रेडियो का iOS का ऐप डाउनलोड करो और गाने सुनना शुरू कर दो।

0: आप सुन रहे हैं नैशविल का वन एंड ओनली बॉलीवुड रेडियो स्टेशन, जहां पे हम लाते हैं आपके लिए बहुत सारी मज़ेदार बातें, लोकल इवेंट्स के बारे में बातें करते हैं, आपको आपकी फरमाइश के गाने सुनाते हैं, अपनी पसंद के प्रोग्राम सुनाते हैं और कुछ नए टॉपिक्स, कुछ ना कुछ आपके लिए नया ढूंढ के लाते हैं, ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो, ओनली ऑन योर ओन रेडियो।
1: इतना शुद्ध जैसे बारिश की पहली बौछार, जैसे माँ के हाथ का अचार, जैसे नन्हे बच्चे की किलकारी, जैसे मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू।

सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।

0: इतना शुद्ध जैसे बारिश की पहली बौछार, जैसे माँ के हाथ का अचार, जैसे नन्हे बच्चे की किलकारी, जैसे मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू।
1: हेलो नैसल, अब आप लेटेस्ट हिंदी फिल्मों के गाने और आसानी से सुन सकते हैं, क्योंकि अब आगे आया मिडिल टेनेसी का अपना ऑनलाइन रेडियो, शुद्ध देसी रेडियो। और हाँ, हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करते रहिए।

सुन रहे हैं नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।